आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल

समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मनीषा और
1: कमलेश का
0: राम राम।
1: और जब हमारी बहनें हमसे मिलती हैं और हम अपने बहनों से मिलती हैं और मौसम के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, इसके साथ ही साथ हम बच्चों के बारे में भी चर्चा करते हैं, खेलों के बारे में भी, और जो आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी हम समय समय पर अपनी बहनों को जानकारी देते हैं। मनीषा
0: जी, बिल्कुल कमलेश, जैसा कि आपने कहा कि आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण है, तो एक जो अवधारणा है हमारी वसुधैव कुटुंबकम की, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार की संकल्पना है ना, और आज है हमारा राष्ट्रमंडल दिवस जो कि यही साकार करता है। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। ये दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे,
1: और 56 स्वतंत्र देशों के संगठन जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बीच में शांति, समानता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसको पहले मनीषा एम्पायर डे के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको राष्ट्रमंडल दिवस नाम दिया गया, तो हम तो आज इसको राष्ट्रमंडल दिवस के नाम से मना रहे हैं।
0: चलिए इस प्यारे से गीत के साथ इस दिवस की शुरुआत करते हैं।

0: खींच खींच का पापड़ा खेलेंगे हम दोनों हाथ मिलकर। और देखो ना, जब हम छोटे छोटे बच्चे बन जाएं, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने अंदर एक छोटे बच्चे को हमेशा रखना चाहिए, जो हमेशा प्रफुल्लित रहता है और तनाव से हमेशा दूर रहता है, उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान रहती है। ये मैंने इसलिए बोला कि जब मैं आ रही थी तो बच्चे ना शाम को खेल रहे थे, वो एक दो तीन बच्चे कह रहे थे टिप्पी टिप्पी टैप व्हाट कलर यू वांट, तो मैंने कहा तो अच्छा खेल बच्चों के लिए।
1: हाँ।
0: फिर एक उन्होंने आइस और वाटर का गेम था, मैंने कहा ये कौन सा गेम होता भाई, हमने तो कभी नहीं खेला। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा आइस बनता है, दूसरे बच्चे वाटर बनते हैं, अगर आइस वाला वाटर को छुएगा तो वो आइस बन जाएगा, वाटर वाला अगर आइस को छुएगा तो वो आइस बन जाएगा। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप ध्यान कैसे रखते हो? कहते वो हमें पता है क्योंकि हमने खेलते रहते हैं। तो मनीषा मैंने सोचा कि देखो खेलों से हमारे बच्चों का मानसिक विकास होता है और वहीं से उनको शिक्षा भी मिल रही है, वहां से उनको साथ में रहने का भी ढंग आता है। और कई बार ये देखा है बच्चे लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन जब खेलना होता है ना, पहले तो बच्चे मुंह फुला लेंगे, मैं नहीं खेलता तेरे साथ, मैं भी नहीं खेलता तेरे साथ। और जब उनका मनपसंद गेम होता है तो वो फिर कहते हैं चलो क्या पुट्टी करनी है, अब्बा ही कर लेते हैं, इसके साथ हम अपना खेल शुरू ही कर लेते हैं।
1: जी हाँ कमलेश, बहुत सारे खेल होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, उनको बोलने की क्षमता भी विकसित होती है, चाहे घर का आंगन हो या स्कूल का मैदान, जब बच्चे खेलते हैं तो उनका सर्वांगीण विकास होता ही होता है। और पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ आजकल खेलों पर भी बेहद ध्यान दिया जा रहा है। पहले कमलेश एक कहावत हुआ करती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब और खेलोगे कूदोगे और तो बनोगे नवाब। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें ना, तो पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब तो बनोगे, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो लाजवाब बनोगे।
0: क्या बात है। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो लाजवाब बने, क्योंकि उनसे उनको देखो मन शरीर और आत्मा का जो पोषण है मेरे हिसाब से वो सब कुछ आपको खेलों से ही प्राप्त होता है। क्योंकि इंडोर गेम्स और आउटडोर, हम हमेशा बोलते हैं बच्चा घर के अंदर ही अंदर रहेगा वो एक अलग है, लेकिन अगर बच्चा बाहर जाकर खेलता है तो शारीरिक जो गतिविधियां हैं जैसे खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, और जब बच्चे उनमें भाग लेते हैं तो पूरी टीम के साथ उनको खेलना होता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा अब मान लो आगे जाता है या कुछ गलत करता है, उसका कोच बोलता है नहीं ये ऐसे करना है, और दूसरा बड़ा बच्चा उसको डांटता है तो वहां पे बच्चा बोलेगा नहीं। तो बच्चे को ये है कि अगर आपकी गलती है तो उस गलती को मान लेने में भलाई है, क्योंकि जब मैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ूंगा तो मेरी जो टीम है वो जीतेगी जरूर।
1: बिल्कुल, यानी कि आसपास के वातावरण को खेलों से बच्चे समझते भी हैं, सीखते भी हैं और मौज मस्ती के साथ साथ उनका विकास भी होता है।
0: बिल्कुल। और देखो जब हम छोटे थे तो लंगड़ी टांग भी खेलते थे, स्टापू भी खेलते थे, रस्सा कूद भी खेलते थे, तो उससे अपनी शारीरिक गतिविधि भी हुई और सबके साथ पता भी चल गया, अड़ोस पड़ोस अब भी कहीं मिले तो कहते अरे हम वो वाला गेम खेलते थे साथ साथ में, अरे देखो ना उस गेम में उससे उसकी लड़ाई हो गई थी तो कैसे हुआ था, अरे दो दिन तो उसने ऐसे किया था लेकिन उसके बाद तो हम सब जैसे पहले थे वैसे ही अब हो गए,
1: क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं।
0: बिल्कुल। और जब हम खेलते हैं तो भी बात तो फिर अलग ही हो जाती है मनीषा
1: जी,
0: तो हम भी बच्चा बनकर खेलने का आरंभ करें, बच्चे को जगाएं अपने मन वाले।

0: और मनीषा, हम जब आते हैं अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, और जब हम बात करते हैं खास की तो हमारी बहनें भी कहती है बार बार खास तो कह रही हैं लेकिन क्या खास है वो खुलासा नहीं कर रही हैं, वो अपने पिटारे में से निकाल कर बता ही नहीं रही हैं। अब जब हम बहनें पढ़ लिख जाती हैं और अपने पैरों पर भी खड़ी हो जाती हैं, अपने परिवार भी हमारे बस जाते हैं, तो कई बार कुछ ऐसी हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं, या कई बार हमें लगता है कि हमारे लिए भी कुछ है या नहीं, यानी कुछ कानून हम लोगों के लिए है कि नहीं, तो सब कहते हैं हाँ भाई सारे कानून आपके लिए तो हैं, क्योंकि अब तो सब एक समान है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। लेकिन जब धरातल पर चलकर हम देखते हैं तो लगता है कि शायद हम अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक हमारी बहनों को पहुंचना चाहिए था। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज हमने अपने स्टूडियो में महिलाओं के कानून अधिकार, शिक्षा और संपत्ति, इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए अपने विशेषज्ञ को बुलाया है।
1: जी हाँ, हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ हैं सावित्री पांडे, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। सावित्री जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं सावित्री जी, महिला शिक्षा की, तो महिला शिक्षा संबंधी कानूनी अधिकार की, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का शिक्षित होना क्यों आवश्यक है?
2: जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होगी। कहते हैं कि एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार और पूरे समाज को शिक्षित करती है, क्योंकि बच्चा तो माँ से ही सीख करके आगे बढ़ता है। तो महिलाओं का की शिक्षा से सशक्तिकरण देश का भी होता है, समाज का भी होता है, इसलिए महिलाओं की शिक्षा अति आवश्यक है, पुरुषों से भी अधिक।
0: कहते हैं ना कि जब एक स्त्री शिक्षा प्राप्त करती है तो दो परिवारों को वो अच्छे तरीके से चलाती है, उसको सोचने समझने की जो उसकी शक्ति,
2: दो ही परिवारों की नहीं, बच्चे की परवरिश करती है, वो विजन आता है, बच्चा ही आगे समाज का निर्माण करता है। तो जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो देश को, समाज को सशक्तिकरण प्रदान करती, सशक्त करती है अपने बच्चे के माध्यम से, अपनी जागरूकता के माध्यम से। तो महिला के एक महिला के शिक्षित होने से एटलीस्ट उस जिस एरिया में वो रह रही होती उतना वहाँ तो सशक्तिकरण आ ही जाता है, विकास का दरवाजा खुल जाता है।
0: कहते हैं ना कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे का भाग्य निर्माण कर पाती है।
2: पहला शिक्षा, पहला स्कूल जो होता है, गुरु, पहली गुरु जो होती है वो माता होती है।
0: जी बिल्कुल जी। और जब हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करते हैं या महिला आरक्षण विधेयक 2010 इसकी भी बात करते हैं, और भी कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाते हैं, इसके बारे में भी मैं आपसे विस्तार में जानना चाहूंगी।
2: देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी महिलाओं को बहुत अधिकार दिए गए हैं। हमारा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है।

0: है सभी को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो।
1: जी।
0: 15A हमारे यहाँ अनुच्छेद जो है संविधान में, जो संविधान सभी के लिए है, जब से हम स्वतंत्र हुए हैं तब से बना हुआ है, सबके समान अधिकारों की बात करता है, हमारे कर्तव्यों की बात करता है। वहाँ 14 में जहाँ सबको समानता का अधिकार दिया गया है, महिला हो या पुरुष हो, उसी तरह से अनुच्छेद 15 में हमें ये दिया गया है कि महिलाओं के साथ लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, जिससे उन्हें समान शिक्षा और समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार मिल सके। इसी तरह से अनुच्छेद 21 में हमें समान रूप से जीने का अधिकार मिलता है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, उन्हें आगे का बढ़ने का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 39 में कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे प्रोविजन है हमें, जहाँ ये बताया गया है कि पहले होता था कि महिलाएं और पुरुष के एक ही समान वेतन का अधिकार नहीं था, एक ही काम के लिए महिलाओं को कुछ और वेतन मिलता था, पुरुषों को उनसे कई गुना वेतन मिलता था ज्यादा। संविधान में ये प्रावधान बनाए गए कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, तो महिलाओं को उस तरह से वहां सशक्तिकरण किया गया। इसी तरह महिलाओं को होता था कि समाज में मोस्टली जब बच्चियां पैदा होती हैं तो बहुत खुशी का माहौल नहीं होता, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाया, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। इसके अलावा यही इतना नहीं किया गया, मान लिया कि उनकी शादी हो जाती है 18 वर्ष से पहले, उनकी शादी के प्रावधान को रोका गया कि उनकी शादी नहीं की जा सकती। जिन बहनों की शादी हो गई है उसके बाद वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो पहले जो उनको मैटरनिटी लीव 6 हफ्ते की मिला करती थी वो अब 28 हफ्ते की कर दी गई, जिससे वो अपने बच्चे का भी संरक्षण कर सकती हैं और वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हैं। बच्चे के रहते हुए आपको उनको फीडिंग वीडिंग करवानी है तो उसके लिए भी उतनी 6 महीने के बाद आप जा रही हैं तो भी आपका बच्चा छोटा है, उसकी देखभाल करनी है, तो आपके कार्यस्थल पे आपको एक सुरक्षित कमरा देने का प्रावधान दिया गया है कि जिससे आपके अपने बच्चे का भी पोषण कर सके और अपने कार्य के साथ भी न्याय कर सके। सभी संस्थानों में क्रेच का प्रावधान किया गया है, इसके लिए सरकारी सुविधाएं दी गई हैं, ये है। और 6 से 14 साल की शिक्षा पूर्णतः मुफ्त कर दी गई है। जब 2009 की बात करती हैं, 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी गई। आगे 2010 में संशोधन किया गया, संशोधन के साथ ये किया गया कि बच्चियों के लिए किसी भी हाल में उनको मुफ्त किताब कॉपी दी जाएगी, उनको ड्रेसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिस पे निर्बाध तरीके से वो आगे शिक्षा ग्रहण कर सके और आगे बढ़ सके।
1: जी। और कुछ स्कूलों में तो सर जी, मैंने ऐसे भी देखा कि जो दोपहर में थोड़ा सा जो भोजन है, अल्प भोजन जिसको मैं कह सकती हूँ, वो भी देने का प्रावधान मैंने अपने मतलब आंखों से देखा है कि बच्चियां जो है खाना भी वहीं पर खाती है।
0: देखिए ऐसा है, सिर्फ ये आप बच्चियों के लिए ही नहीं है, भोजन का प्रावधान सभी बच्चों के लिए किया गया है। 6 से 14 साल के जो बच्चे जाते हैं उनको शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी मिल सके। गरीबी की वजह से या किसी पिछड़ेपन की वजह से उनको किताबों की अव्यवस्था ना हो, तो मुफ्त किताबें, मुफ्त ड्रेस, मुफ्त खाना, ये सब सरकारी स्कूलों में प्रावधान किया गया है। बाकी जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ भी इनकी व्यवस्था 25% की गई है कि 25% का आरक्षण प्राइवेट स्कूल्स में भी सभी को दिया जाएगा, जिससे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ के आगे बढ़ सकें और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें।
1: यानी कि देखो मनीषा, जब इतने सारी हमें सुविधाएं मिल जाती हैं, तब तो हर माँ बाप यही चाहेगा कि उनकी बच्चियां जो हैं वो स्कूलों में जाएं और वहां पर जाकर शिक्षा प्राप्त करें।
2: बिल्कुल
1: सावित्री जी, आपका तो काम है कानून की बातें करना, कानून के विषय में बताना, जो केस आते हैं उनके बारे में करना, लेकिन कभी बीच में ऐसा समय भी होता होगा जब आपको लगता हो कि भाई अब मैं परेशान हो गई हूँ, या अब मुझे ये लगता है कि कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, कुछ गीत भी होना चाहिए,
2: तो आपकी पसंद का कोई ऐसा गीत जो आपको याद आ रहा हो और आपको बेहद पसंद हो?
0: चलिए सुना दीजिए, ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो।
1: क्या बात है।
2: चलिए
0: हमारी बहनों को अपना सर ऊंचा करके सम्मान पूर्वक जीने का हक है और उन्हें सम्मान पूर्वक ही जीना चाहिए।

0: सावित्री जी, एक महिला जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार के दायरे से बाहर निकलती है तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कई बार उसके साथ लिंग भेदभाव होता है, यौन उत्पीड़न होता है और सामाजिक दबाव भी कहीं ना कहीं सहना पड़ता है उसे। तो ऐसी स्थिति में हमारा कानून उनकी कैसे रक्षा करता है?
1: संविधान में ही इस बात का प्रावधान किया गया है
0: जी।
1: हमारे यहाँ अनुच्छेद 15 बताता है कि किसी भी तरह का लिंग भेदभाव या इस तरह की असमानता न की जाए। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है कि जिससे उनके साथ किसी तरह

0: भेदभाव ना हो। खाली लिंग भेदभाव नहीं, जाति धर्म संप्रदाय किसी के भी नाम पे उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा अनुच्छेद 21 भी समानता से जीने का अधिकार देता है। जरूरत है तो हमारी बहनों को अपने अधिकारों को जानने की समझने की, कानून की कमी नहीं है, बहुत है हमारे संविधान में और उसके इतर भी जा करके कई कानून महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाए गए हैं। 2009 का संशोधन आया था, उस अधिनियम आया था, उसके बाद 2010 का संशोधन भी आया जिसमें महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में और अब आगे बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेप लिया है कि हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, पहले तो ये खाली किया गया था प्रावधान कि इनको संसद में या पंचायत राज में उनको 1/3 स्टेटस दिया जाएगा, कि यदि 3 लोग हैं तो उसमें से एक महिला का होना आवश्यक था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ करके सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फर्दर स्टेप लिया है, पार्लियामेंट से भी लिया गया, सरकार ने भी स्टेप लिया है कि अब चाहे वो संसद हो, चाहे आपका कोई शिक्षा संस्थान हो, आपका जुडिशियरी हो, कहीं भी, वहां ये प्रयास किए जा रहे हैं कि 1/3 का आरक्षण दिया जा रहा है जिससे उनकी लीडरशिप और उनका नेतृत्व बढ़े महिलाओं का। आवश्यकता है तो बहनों के आगे बढ़ करके उस प्रावधान का जो भी किए गए हैं उसका लाभ उठाने का है, उसके लिए इन्हें अपनी बेड़ियां खुद तोड़नी होंगी, कानून की कमी नहीं है। और इनके लिए जगह जगह कानूनी सहायता और सहायता के लिए भी बूथ बनाए गए हैं, चाहे वो किसी कोर्ट में जाएंगे, पंचायत राज में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे वहां जाकर के ये सहायता मांग सकती हैं। लेकिन जब ये अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी ही नहीं तो उसका उपयोग कैसे करेंगी। लिंग भेदभाव के लिए आप अनुच्छेद में, आपको संवैधानिक अनुच्छेद में आपको वो दे दिया गया 15(1) में किया गया कि आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आपको जानने की भी तो आवश्यकता है। आप जानिए कि आपको अधिकार दिए गए हैं, आपको सशक्त करने के लिए दिए गए हैं, तो आप अपने अधिकारों को जानिए। आप ज्ञान ही जो होता है सशक्तिकरण का पहला स्टेप होता है। आप जानिए कि आपको सरकारी कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, आपको कहाँ कहाँ आरक्षण दिए गए हैं, आपके क्या क्या अधिकार हैं। कानून बहुत बनाए गए हैं, समानता का अधिकार है आपको, समान वेतन का अधिकार है आपको, मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। यदि बच्चियां 10th में 12th में अच्छे मार्क्स ले आती हैं तो उनके प्रोत्साहन के लिए भी सरकार उनको वजीफे दे रही है कि जिससे आगे की उनकी शिक्षा पूरी हो सके, वो आगे बढ़ सके। यदि वो मेरिट्स में आती हैं तो सरकार उनको आगे बढ़ाने के लिए भी अपने खर्चे पे भेज रही है, इसके लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमारी बहनें भी प्रतिबद्ध होकर के समाज की बेड़ियों को तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, जाने।
1: क्योंकि कई बार ये होता है, कोई सामाजिक हमारी परंपराएं होती हैं, कुछ अपने ऐसे विचार होते हैं कि हम चीजों को जानते हुए भी सावित्री जी हम चुप रह जाते हैं, और जब बात चलती है संपत्ति की वहां पर महिलाओं को मालूम होता है कि हमारे क्या अधिकार हैं। लेकिन कहते हैं ना कि संपत्ति एक ऐसी चीज है जो कि रिश्तों में खटास पैदा कर देती है, लेकिन अगर आपको वो अधिकार भी मिला हुआ है और अगर आपको जरूरत पड़ती है कि भाई मुझे इस समय संपत्ति की जरूरत है, या भाई मैं ऐसी प्रॉब्लम में आ गई हूं कि मुझे उस परिवार का जो एक संपत्ति का वो बना उसमें थोड़ा मेरे को साझेदारी चाहिए, तो वो भी कहने के लिए बहनों को बड़ा टाइम लगता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो आप जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो महिलाओं के जो संपत्ति अधिकारों को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो साधारण भाषा में महिलाओं के संपत्ति अधिकार क्या है और उनसे उनका जो जीवन है वो कैसे प्रभावित होता है।
0: देखिए, सबसे पहली तो बेड़ी तोड़नी होगी कि जो सोशल और इमोशनल प्रेशर होता है, लोग कहेंगे कि अरे अपने भाई से ही हिस्सा मांग रहे हैं, अपनी ससुराल में ही हिस्सा मांग रहे हैं, उससे उन भावनात्मक चीजों से हमारी बहनों को ऊपर उठना पड़ेगा। सरकार ने नियम बनाए, कानून बहुत सशक्त है आपके लिए, मिताक्षरा में भी आपको हक दिया गया था, लेकिन उससे आगे बढ़ करके आपको 2005 में भी अधिकार दिया गया, आपको फंडामेंटल राइट्स में भी दिए गए हैं कि हाँ आपके अपने कानूनी अधिकार हैं। यदि पिता की कोई लड़की अविवाहित है तो उसको अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी पूरा का पूरा राइट है, जैसा कि उसके भाइयों को है, किसी को भी जो मतलब परिवार

0: लड़के को जितना अधिकार है उतना ही लड़की को भी अधिकार है कि वो अपने पैतृक संपत्ति में से वो हक ले सकती है। यूपी में लेकर के थोड़ा सा नियम अलग है, जहां कृषि योग्य भूमि के लिए शादीशुदा लड़कियां ये नहीं कह सकती हैं कि उनको वो अधिकार मिलेगा, बाकी सारी संपत्ति पे उनका अधिकार है, वहां रहेंगी, रह सकती हैं, उनका भरण पोषण भी हो सकता है
1: जी।
0: लेकिन सिर्फ यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां कृषि योग्य भूमि के लिए किसी शादीशुदा लड़की को वो अधिकार नहीं दिए जाते हैं, बाकी सारे संपत्ति का अधिकार बराबर मिले हुए हैं और सभी जगह मिले हुए हैं। इसके अलावा यदि आपके पिता ने आपको पिता से कोई संपत्ति मिली हुई है, तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि यदि लड़की को कहीं किसी भी तरह उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, कुछ होता है, तो वो संपत्ति उसके पति को चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बहनों को ये जानना जरूरी है अपने अधिकार के लिए कि यदि ऐसा कुछ होता है तो बहन को उसके पिता की तरफ से जो संपत्ति मिली हुई है उस संपत्ति का अधिकार उनके बाद उनके पिता को ही है, उनके पति को अधिकार नहीं जाता है। इसी तरह इससे स्टेप एक आगे बढ़ते हैं, यदि उनको ससुराल पक्ष से कोई संपत्ति मिली हुई है, ससुराल पक्ष से कोई भी संपत्ति मिली हुई है, चाहे उनके पति ने ही उनके नाम पे खरीदा है, तो यदि महिला को कहीं कुछ हो जाता है तो उस पे उसके पति का अधिकार नहीं होगा, पहला अधिकार उनके बच्चों का होगा। ये अधिकार बच्चों का है, बेटा है, बेटी है, उस संपत्ति पे अधिकार बच्चों का होता है, ना कि पति का। बच्चे, उनके बच्चे नहीं होंगे तब पति का अधिकार आता है, उससे पहले पति का अधिकार नहीं आता है।
2: आज हमने कितनी
1: अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें।
2: हाँ, कई बार ये होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हमारे एक्सपर्ट आकर हमें बताते हैं तब हमें अच्छी तरह से चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। और जब आप संपत्ति की बात करते हैं और आप इतने सारे केस भी देखती होंगी, तो उनके बीच में, उन केसों के बीच में कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि भाई सही फैसला हो गया या नहीं हुआ, ऐसा भी कभी कभी आपको लगता होगा?
0: कभी कभी होता है कि फैसले की, वहां तो न्याय संगत जो न्याय किया जाता है वो प्रमाणों के आधार पे किया जाता है, जो साक्ष्य होता है साक्ष्य के आधार पे किया जा रहा है। अब वहां यदि हमारी बहनें आगे ही आएंगी नहीं, इमोशंस में बढ़ करके, लोगों के इमोशनल प्रेशर में आकर के कहीं लिख करके ये दे देती हैं, वो उनको, वो जरूरतमंद है लेकिन कहीं ना कहीं उनसे प्रेशर में कैसे भी उनसे दस्तखत करवा लिया गया कि अपना हक आपने छोड़ दिया, तो उस स्थिति में कानून के भी हाथ बंधे हुए होते हैं। कानून होते हुए भी जब आप अपना ही अधिकार छोड़ रही हूं और वो भी लिखित में दे दें, तो उसमें कौन आपकी हेल्प कर सकता है? कैसे? कोई नहीं हेल्प कर सकता। आपके कानूनी अधिकार होते हुए भी चूंकि आपने उसे खुद छोड़ दिया है, तो हम देखते हैं कि अन्याय हो रहा है आपके साथ, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कानून तो साक्ष्यों के आधार पर चलता है। आपने अपने अधिकार खुद ही छोड़ दिए हो तो उसमें कानून क्या करेगा आपके लिए?
2: बिल्कुल।
0: तो जरूरत है कि आप खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, उन्हें जाने और उनका संरक्षण करें।
1: तो मैम, अगला गीत आप कौन सा सुनना चाहेंगी?
0: देखो देखो जी, लता जी का।
1: जी चलिए, लता जी का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, सावित्री पांडे जी की फरमाइश पे।

0: मित्र जी, आपने बहुत सी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई, जानकारी हमारी बहुत बड़ी और हमारी बहनों की भी। एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं और संपत्ति के अधिकार को कहां तक प्रभावित करता है, और क्या महिला संपत्ति अधिकार कानून के तहत बेटी समान संपत्ति अधिकारों का दावा कर सकती है?
1: बिल्कुल कर सकती है, बेटी समान संपत्ति का दावा कर सकती है। उसमें जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहां भी जैसा कि मैंने बताया, यूपी में एक नियम यह है कि वहां खेती योग्य जमीन के लिए लड़की नहीं दावा कर सकती है, शादीशुदा। अविवाहित बेटी की बात नहीं की जा रहा है, अविवाहित बेटियों का तो सारे जगह सबको समान अधिकार है, बाकी सब में मिताक्षर के हिसाब से भी लड़कियों को, जब संशोधन 2005 में किया गया उसके बाद लड़कियों को वो सारे अधिकार दिए गए संपत्ति जो किसी भी बेटे को अधिकार होते हैं। पहले ऐसा था कि उनको रहने का अधिकार था, बेच नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, अपना हिस्सा अलग से नहीं मांग सकती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लड़कियां अपना पूरा हिस्सा अपने भाई के बराबर ही ले सकती हैं, उनके वो पूरे अधिकार होते हैं। मिताक्षर में भी जो किया गया, मिताक्षर यानी जो आप भारतीय कानून की बात कर रही हैं कि उसके हिसाब से होता है, वहां भी वो अपने ससुराल में भी अपने अधिकार ले सकती हैं। यदि बाई दबे किसी समय उनके पति की मृत्यु हो जाती है
0: जी,
1: तो उनको उनका भरण पोषण उनके ससुर की संपत्ति से किया जाएगा। उनके ससुर की भी किसी वजह से पहले या मृत्यु हो गई है या हो जाती है, तो उनके बच्चों के पूरे अधिकार बने रहते हैं, वो अपने ससुर की संपत्ति में वही पूरा हक ले सकते हैं जो उनके देवर जेठ जेठानी और बाकी लोगों का होता है। ये उस स्थिति की बात की जा रही है यदि बिना किसी तरह की वसीयत किए हुए भी उनके पति या उनके ससुर की डेथ हो जाती है, तो उस घर में उनको पूरा अधिकार होता है रहने का, बच्चों के भरण पोषण का, और अपने पति की के हक के हिसाब से ही उस संपत्ति में बंटवारा करवाने का भी इनका, महिलाओं का पूरा हक होता है, जिससे पूरे सम्मान पूर्वक वो अपना आगे का जीवन बिता सके।
2: आज हमने सावित्री जी से इतनी अच्छी बातें सीखी कि जो हम बहनों के अधिकार हैं, शिक्षा और संपत्ति को लेकर उनके बारे में विस्तृत हमने जानकारी ली कि महिलाओं के कानून अधिकार संपत्ति और शिक्षा को लेकर क्या क्या है, और हमने विस्तार से सब चीजें जान ली है। तो सावित्री जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका हार्दिक आभार है। और चलते चलते मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपका एक और मनपसंद गीत
1: आशाएं।
0: चलिए, आशाओं के साथ हम भी उड़ते हैं।
1: आशा, और बहनों से भी गुजारिश है कि आशा ना छोड़ें।
0: बिल्कुल।

0: सड़कें होती हैं ना और रास्ता होता है, वो कहीं ना कहीं किसी मंजिल तक हमें जरूर ले जाता है। और ऐसी ही 2017 में घोषित भारत सरकार की भारत माला परियोजना भी है, जो वित्त पोषित बृहद और महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास का कार्यक्रम है। इसके मुख्य लक्ष्य जो है वो आर्थिक गलियारों, तटीय सड़कों, सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ना, यातायात को सुगम बनाना और जो माल ढुलाई लागत है यानी लॉजिस्टिक लागत को कम करना। पहले चरण में 26,425 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का इसमें निर्माण भी हो चुका है और हाई स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है।
1: तो और एक जानकारी मैं भी अपनी बहनों के साथ साझा करना चाहूंगी, वो है प्रीति लता वादेदार के बारे में। और ये जो थी, ये प्रथम महिला क्रांतिकारी थी और इनका जन्म जो है 1911 में हुआ था और स्नातक की उपाधि के बाद वे चटगांव के एक बालिका विद्यालय में पढ़ाने लगी थी। और इन्होंने जो है अंग्रेज सेना से जो है मुकाबला उनके साथ में किया था और यूरोपियन क्लब पर उन्होंने हमला किया था, उसका नेतृत्व किया था। देखो कितने साल पहले, तो हमारी बहनें किसी से कम नहीं, लेकिन वो कई बार डर जाती हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि डरना तो उनको चाहिए नहीं, क्योंकि ये सब जो चीजें ये हम बातें बताते हैं, इतिहास हम उनको समय समय पर बताते रहते हैं, तो उस इतिहास से उनको सीखना भी चाहिए। और जब प्रीतिलता उसके साथियों ने बम फोड़ने शुरू कर दिए थे तो एक पूरे मतलब क्लब में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। अगर वो चाहती तो बाहर निकल सकती थी, लेकिन वो बड़ी ही उससे खड़ी रही और उन्होंने क्या डिसाइड कर आखिर में कि पोटाशियम साइनर को खाकर उन्होंने आत्मघात कर लिया।
0: जी हाँ, तो यानी कि कमलेश उनका जीवन बताता था कि साहस और देश प्रेम की कोई उम्र या लिंग नहीं होता।
1: बिल्कुल, तो इनको हम नमन करते हैं।

0: कि गर्मियां इतनी बढ़ रही हैं, लू भी चल रही है, और ऐसे में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना कमलेश, वो जिद कर रहे हैं बाहर घूमने जाने की और रोते हैं, मम्मा हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें नानी हाउस जाना है, है ना।
1: अच्छा, आज
0: बहुत
1: तो
0: सारी फरमाइशें हैं।
1: और हमारी बहनें कई बार ये कहती, अरे स्कूल, तुम तो स्कूल ही चले जाते तो बढ़िया था, क्योंकि सुबह अपना टाइम से तैयार करो, टाइम से चले जाओ। अब ये कि कोई बच्चा 10 बजे जग रहा है, कोई जो 11 बजे, और उस पर भी मम्मी उठाती रहती, तब जगते, अरे मम्मी छूटती है, कुछ तो सोने दो, अभी स्कूल जाएंगे तो अब जल्दी जगा ही दोगी ना हमें। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई गर्मी के मौसम में जो जो आपको अपने बच्चों को गर्मी के हिसाब से खाना देना है, उनको जो शरबत देने हैं उनको पिलाइए, उनको बताइए कि इस शरबत से आपको क्या लाभ मिलेगा, ताकि बच्चों को उसका टेस्ट भी आए और उसका जो गुण है उसके बारे में भी पता चले।
0: जी हाँ, और छुट्टियों का महत्व भी पता चले, क्योंकि बच्चों को तो रहता है कि चाहे धूप हो छांव हो, उनको बस बाहर लेकर के जाना है, पर उन्हें हमें बताना है कि ये इतनी गर्मी है, लोग परेशान हैं, तो ठंडे पेय पदार्थ दें बच्चों को और बच्चों का बेहद ख्याल रखें।
1: और अगर जब घर से बाहर भी जाएं तो शाम के समय निकलें, या जब तेज धूप हो उससे पहले पहले बच्चों को लेकर जाएं, और सिर के ऊपर उनके आजकल तो इतनी प्यारी प्यारी टोपी आ गई है, वो लेकर जाएं तो और भी बढ़िया रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और हमारे कार्यक्रम का जो पता है वो भी बता दो मनीषा।
0: जी हाँ, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001।
1: और जो हमारा मेल आईडी वो है feedback@gmail.com।
0: और हमें रहेगा बहनों के ईमेल का और खत का इंतजार, क्योंकि बहुत से सुझाव, बहुत सी अगर कोई शिकायतें भी हैं तो प्लीज हमें आप जरूर लिखिए, हमें बताइए कि कार्यक्रम कैसा लगा, और कोई गीत हो तो वो भी हमें बताइए।
1: और प्रस्तुतकर्ता इस कार्यक्रम के हैं तुषार पाराशर,
0: और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
1: और इसी के साथ हम बहनों को कहें, बहनों राम राम, राम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार

0: सुधांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों टीबी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपातकालीन चिकित्सा हीमोफीलिया प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi, reaffirming the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Briefing the media after the meeting at Hyderabad House, Dr. Jayashankar said that talks over lunch focused on the latest developments in the Gulf region, while the Indo-Pacific remains an important priority ahead of the Quad meeting. The External Affairs Minister stressed the importance of concluding a trade agreement between India and the United States at the earliest. He welcomed the recent expansion in energy trade and said diversified energy supplies are central to India's energy security.
2: In terms of the political understanding between India and the United States, we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. And in our meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio described India as one of the United States' most important strategic partners.
3: A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. And you work

दोस्तों, इस गाने को सुनकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज की फिल्म कौन सी है। जी हाँ, आज की फिल्म है अनुरोध, और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

1977 में बनी एक हिंदी भाषा की संगीतमय ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन किया था जाने माने फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंता ने। और इस फिल्म के अगर कलाकारों की बात करें तो इसमें राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, डिंपल कपाड़िया, जी हाँ डिंपल कपाड़िया की बहन, और ये उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी। इसके अलावा इसमें अशोक कुमार, असरानी, असित सेन, उत्पल दत्त और निरूपा रॉय ने भी अभिनय किया था। और इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। और इस फिल्म की कहानी क्या है हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

दोस्तों, हम भी आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। आप अपना फीडबैक हमें ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं, और जो हमारे नियमित श्रोता हैं यानी रेगुलर लिसनर हैं, उनको तो मालूम ही है कि हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। और जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैंने इस ईमेल आईडी को दोबारा से बता रहा हूं, ip.radio.delhi@gmail.com। इस पर मेल करके आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं आज हम अनुरोध फिल्म की, और इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब ने बहुत ही यादगार भूमिका निभाई है। और उनके अलावा इस फिल्म में विनोद मेहरा साहब का भी एक छोटा सा रोल था, लेकिन वह रोल बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दिल को छू जाने वाला था। और हिंदी सिनेमा में जब भी परंपरावादी किसी कवि या लेखक को संघर्ष करना पड़ता है, तो उसे पहचान और अस्तित्व के लिए बेहद कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, चाहे वो बात सुपर डुपर क्लासिकल हिट मूवी प्यासा के विजय यानी गुरुदत्त साहब की हो, या फिर नमक

रजा मुराद साहब की हो या फिर बात हो हमारी आज की फिल्म अनुरोध के श्रीकांत की। उनकी कविताएं तभी सामने आती हैं जब कोई उन्हें गीत के रूप में पहचान देता है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर एक कवि को बीमार और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़े तो वो क्यों संघर्ष करे, कैसे संघर्ष करे, क्योंकि उसे एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध करना पड़ता है, उसे आत्मपीड़ित होना पड़ता है, जो समाधान तो देता है लेकिन कभी स्वीकार नहीं करता है। अगर हम बात करें अनुरोध फिल्म की तो अनुरोध फिल्म उस गुमनाम कवि को एक श्रद्धांजलि है जो बनावटी खुशियों से पले बढ़े समाज के अशांत जीवन को सुकून देता है। इस कवि की दुनिया में छल कपट और दिखावे के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी रचनाओं में पारदर्शिता होती है, उनकी प्रतिभापूर्ण आवाज के माध्यम से लोगों तक उनके दिलों को छू जाते हैं और इस प्रक्रिया में उनकी आवाज स्मृति में बस जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण खन्ना यानी राजेश खन्ना। राजेश खन्ना जो फिल्म के मुख्य किरदार हैं और उन्होंने निभाया है अरुण का किरदार। वो एक महत्वाकांक्षी गायक हैं और अपने दोस्त श्रीकांत जिसका किरदार निभाया है विनोद मेहरा साहब ने, और वो उनकी कविताओं के माध्यम से अपने मन की बात को कहने का मंच देते हैं। ये अनुरोध फिल्म एक बेहद ही संगीतमय फिल्म है जिसे किशोर कुमार, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दमदार जोड़ी से ताकत मिली है। और इस फिल्म की पटकथा कैसी है, कहानी में आगे क्या होता है, हम आपको वो सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, यानी इसी फिल्म से किशोर कुमार साहब की आवाज में एक बेहद ही प्यारा गाना आपको सुनाते हैं और उसके बाद आपके संदेश भी इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी के साथ।

बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। गांव हाड़ीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सचिन शर्मा और नंदिनी शर्मा का ये ईमेल आया है और इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम एक ही फिल्म से आज की फिल्म अनुरोध के बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं वो बेहद पसंद आ रही है। हम आपका कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद तो आपको है कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रम को सुनते

आपके मैसेजेस हमें अपने इस कार्यक्रम में शामिल करना है। तो एक और संदेश ले लेते हैं। ये हमारे नियमित श्रोता हैं, देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और डॉली बेबी पूजा, राधिका और प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का। और इन्होंने लिखा है कि आज आप एक ही फिल्म में अनुरोध फिल्म के जो गीत और संगीत के साथ साथ कहानी आपके श्री मुख से हम सुन रहे हैं तो हमें बेहद आनंद आ रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, हमारी आज की जो फिल्म है अनुरोध, ये भी याद रह जाने वाली फिल्म है। और हम इस कहानी के बारे में बात कर रहे थे, जो इस फिल्म की कहानी है, तो उसके में ये होता है कि जो इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले लिखा गया है, तो वो ऐसा लगता है कि वो राजेश खन्ना साहब के लिए ही लिखा गया है। हालांकि इसमें उन्हें अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए पेड़ों के आसपास दौड़ने का मौका तो नहीं दिया गया है, लेकिन उनका किरदार अपनी आवाज से पहचाना जाता है, क्योंकि वो एक रेडियो स्टेशन में काम करता है, जैसा कि हम यहां पर आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। और अरुण के पिता यानी जिसका किरदार निभाया है उत्पल दत्त साहब ने, और वो एक जाने माने व्यापारी हैं, और उन्हें अपने बेटे का गायन यानी सिंगिंग का जो उनका शौक है, वो एक आम पिता की तरह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा विद्रोह कर देता है और इसके बाद अपनी पहचान बनाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, जिससे उसकी माँ बहुत दुखी होती है। लेकिन श्रीकांत तो बेहद प्रतिभाशाली है, और जब उसका दोस्त उसकी रचनाओं को आवाज नहीं देता तो उसकी लेखन प्रतिभा अधर में लटक जाती है, वो अवसाद यानी डिप्रेशन में चला जाता है, फिर एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और अपने दोस्त की परेशानियों से बेखबर अरुण, जिसे अब संजय के रूप में जाना जाता है, वो दूसरे शहर में अपना टैलेंट दिखाने का मौका तलाश रहा होता है, जहां वह मैकेनिक के रूप में काम करके अपना जीवन यापन करता है। और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। सुनीता यानी जो सिंपल कपाड़िया जी है, उन्होंने इसका किरदार निभाया है, और आपको बता दें ये डिंपल कपाड़िया की बहन है और ये उनकी डेब्यू फिल्म है, यानी इसी फिल्म से उन्होंने अपने करियर की

कहानी में कुछ यूं होता है कि सुनीता अरुण यानी संजय, जिसका किरदार राजेश खन्ना साहब ने निभाया है, वे उनकी बेहद बड़ी प्रशंसक होती हैं और परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं फिल्म में कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाते हैं। गायक सुनीता को खोने के डर से वो अपनी पहचान को उजागर तो नहीं करता, लेकिन अब उसे श्रीकांत यानी जो हमारे विनोद मेहरा साहब ने उसका किरदार निभाया है, उनके इलाज के लिए धन जुटाने के लिए मंच पर आकर गाना गाते हैं और कुछ इस तरह से घटनाएं घटती हैं। और कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब श्रीकांत को अपने बिछड़े दादा यानी अशोक कुमार साहब उनके बारे में पता चलता है, तो बच्चों के लिए वे एक आश्रम चलाते हैं और कहानी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सभी खुशी खुशी एक हो जाते हैं और श्रीकांत ही आश्रम में गाए जाने वाले अपने ही गीत तुम बेसहारा हो तो आइए सुनाते हैं यही गाना तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, मन्ना डे साहब और साथियों की आवाज में।

साथ आपके मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और अपार का मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है कि आज की फिल्म के जो गाने और जानकारी आप दे रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहा है, आपकी शानदार प्रस्तुति है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हैं दोस्तों, कितना ही प्यारा सा संदेश इस गाने के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से हम सभी को दिया गया है कि अगर हम बेसहारा हैं तो दूसरों का सहारा बने। बात करते हैं और कुछ मैसेजेस की। तो एक मैसेज आया है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से। अरे क्या बात है, हमारा कार्यक्रम मुंबई में भी सुना जा रहा है। जी हाँ, और ये संदेश

अमर साहब की दर्द भरी आवाज में अभी आप इस गाने को सुन रहे हैं। और इसी बीच कुछ और संदेश ले लेते हैं। हमारे नियमित श्रोता हैं शांतिनगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, और इन्होंने लिखा है कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम लग रहा है, आपकी प्रस्तुति भी बेहद पसंद आ रही है। और इसके अलावा हनुमान नगर नरवाना हरियाणा से बालकिशन, रोशनी, आरती, मुस्कान, पूजा का भी संदेश हमें आया है। और अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, फिर किसी न किसी कार्यक्रम में इसी चैनल में आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद रखिए ख्याल और सुनते रहिए हमारा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। नमस्कार।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अते अमरीका दे विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अज नवी दिल्ली च कई मुद्दयां ते चर्चा कीती। दोवां धिरां ने भारत अमरीका रणनीतिक भाईवाली नूं महत्वपूर्ण करार दिता। सरकार वजन ते माप निरीक्षण प्रणाली नूं मजबूत करन लई जांच केंद्रां दी भूमिका दा करेगी विस्तार। अज पाकिस्तान दे बलोचिस्तान च इक रेलवे पटड़ी ते होए धमाके च 30 लोकां दी मौत ते कई जख्मी। फैडरेशन कप एथलैटिक चैंपियनशिप च गुरविंदर वीर सिंह ने मर्दां दे 100 मीटर दौड़ च सोने दा तमगा जित्तिया। अते आईपीएल क्रिकेट विच अज मुंबई इंडियंस दा मुकाबला मुंबई च बाद दोपहर 3:30 बजे राजस्थान रॉयल्स नाल, ते एक होर मैच विच कोलकाता नाइट राइडर्स दा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स नाल शामी 7:30 बजे होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ते अमरीका दे विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अज नवी दिल्ली च कई मुद्दयां ते विचार चर्चा कीती। दोवां धिरां ने भारत अमरीका रणनीतिक भाईवाली नूं महत्वपूर्ण दस्या अते व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता ते खेतरी सुरक्षा दे खेतरां विच वी महत्ता ते जोर दित्ता। दिल्ली दे हैदराबाद हाउस विखे डॉ जयशंकर ने कहा कि श्री रूबियो दी भारती फेरी अजिहे समें च हुई है जदों दोवें धिरां नियमित संपर्क विच ने। उन्हां इह वी कहा कि खाड़ी खेतर बारे वी चर्चा कीती गई ते क्वाड मीटिंग तों पहलां ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਐ।

0: चार कैदी हैं जिनको चोटें आई हैं, जो कि उनकी आपस में ही जो भिड़त हुई थी उसके कारण जो चोटें आई हैं। प्रिजन के अंदर अलग अलग जो ग्रुपबाजी लगातार ही चलती रहती है, तल्खी आ जाती है, तो उस वजह से बेसिकली आपस में टसल हुआ।
1: देशव्यापी फिट इंडिया मुहिम के हिस्से वजों सीमा सुरक्षा बल दे जलंधर स्थित पंजाब फ्रंटियर हैडक्वार्टर ने आज फिट इंडिया साइड ऑन साइकिल मुहिम के 75वें एडिशन के हिस्से वजों एक साइकिल रैली का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बीएसएफ के डायमंड जुबली जश्नां नूं मनाउण लई शरीरिक तंदुरुस्ती, एक सेहतमंद जीवन शैली ते वातावरण सुरक्षा नूं उत्साहित करना रहा। यह रैली पंजाब फ्रंटियर हैडक्वार्टर बीएसएफ के अश्विनी स्टेडियम तो शुरू हुई, इस विच 250 तो वध बीएसएफ कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस समागम ने शरीरक तंदुरुस्ती बनाई रखने ते एक सेहतमंद जीवन शैली अपनाउण लई वचनबद्धता नूं दर्शाया। साइकिल रैली नूं बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर दे इंस्पैक्टर जनरल डॉ अतुल फुलचेले ने झंडी दे के रवाना किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार

0: रेलवे विस्तार का स्वागत किया और कहा कि आधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं, और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्यपालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी @90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और चिलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ है जागृति शर्मा।
2: IPL क्रिकेट में आज दो

0: मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जारू आजु को प्रोग्राम में छीर अनि जेले जानी बुट जोयर सिट यानी ताली में बारार मोरक कलेक्टोन तोने मजा नात शरीबे हेशपेच या कसिदा के हेशपेच कलामे छोटंग फैरो के चमाट गथोन शिल्दा टेजारू तोने प्रोग्रामो छुपर एक टेलीफोनिक चागमोर एक थोन जिला करगिलो एक के नोम निखतो फिजिशियन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुर्तजा अली साहब साथ तो रेने जो डिम ग डिमे सेहते बारार शलताक छोड़क इनशाला फयारोन सजारू अनि तो असली आजू को प्रोग्राम है छीर शिल्दाटे सजारू बे बुट और लेल हनी की सिट यानी एलुम जील दव दबोन से देगा एक अदाई पुं एक बिल अदाई नेमत एक बिल कनी से बरकत गी मनुरुस से गा खची हक गा बातिल अबोम गा सुबोम सुजोन थो बेनो सिट बरकत गी ही मनुरुस तोम जील दव दबोने तोम खालिका सुजोन थ्यो बेनो सजारू मनुरो दुनिया तिजा ओई लाओ खेनेक बोदो खेनेक जहालत गा ला इल्मी जा शतो बल्कि अनि रजेस तो बस किक निबे कि मनुरोस बोदो खेनेक तिरे सो शिरी जिंदगी तरेगो हेवाने शिरी जिंदगी तरेगो मगम खेन तरजिलो हिसाबेच वक़त गाओ हिसाबेच रस एलुमगा आगाही सने सिटी कोरो पाएगा जेल जो खजी तुम ब्याक डूक रही हेस्पेजा लवी तो शकल जा प्रे सने तुम छाल बलुसात मिष्ट जेल की जे तुम जिंदगी तरियो ने सिटी गो सजारू एलुम यानी सिटी बरकत गिर हगार शो ने सिटी लो शिलदारे सजारू अनुमोश केस जोगा लिशीनुश पोशीदानुश कि इब्तदाई इंसान से पुमुक पुमुक इंसान से बाई बोनी खोनी प्योनी बोनी जो नि खालो जो नि खेबो जलो हगारे क्या फूश होने रसले लेल ना सिली जो न मोजगा फलगा बाई खे तुम झील तरे मनुरुस अनि इल्मे बरकत गे

या इलास्टिस्टो या मतलब प्रेशर तो शिबिलो नार मतलब ऑटोमेटिकली डायलेट में ही मतलब क्वार में ही थे नार तो प्रेशर कम हो आई फर वो प्रेशर कम बिल्कुल नार तो शिदाम शिबे ऑटोमेटिक अपनी बॉडी जब मतलब मेकर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया तो कैसी हैं तो प्रेशर विद लिमिट के छोड़ना या मतलब 100 नॉर्मली 140 से लग नॉर्मल करना थी यानी 100 से 140 के बीच में सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल सच हूँ अब उम्र के साथ उम्र के हिसाब से या बीमारियों वजह के या सिंपल उम्र के हिसाब से जैसे उन एसेंशियल हाइपरटेंशन में जो 40 साल के बाद ब्लड प्रेशर दे सो मैक्सिमम टाइम कारण जगह तो सो कारण उम्र

0: ऑयली फेटी चीजें बिल्कुल कम करना है। विल डू वेट कम छो, वेट बढ़ाई बोलो, ब्लड प्रेशर बढ़ाई बोलो। तो अन्य मेन चीज है थोड़ी सी पता नहीं, लोकल बाइक होनी, फ्रूट व्रूट सब्जी वब्जियां जितना खाएगा बेहतर है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो साल्ट कम होनी है जी, ऑयली फेटी चीजें मतलब चर्बी बोनी जो भी बटर वो आजाद से बुरी कम छो।
1: भैसा जो डॉक्टर साहब थो बहुत मिस राजा जो कि अनेक किस्म आइली चीज है नूम कनिसर में सुना मी फाश है मैं जो परहेज छो ना हो जी जो, लेकिन आने एक बड़ा खोज ने कनी बेनी जो कि डॉक्टर ली मरीज हाइपर टेंशन हो मरीज डॉक्टर ली फेन हो कोई डॉक्टर से अगर रसो ब्लड प्रेशर है हाँ तो या लो हूँ तो दवाई देनो तो जो अक्सर जग साथ पश होने की डॉक्टर से मुतवातिर छोरिया थो दवाई हफ्ता या दो हफ्ते या मोज रखा तो बंद है ना तो अनु कचा के सेहते कर अनु करामत भेजो अनु सो क्रोम बिल लेकिन अनु पेशेंट से बड़ी गलत थे
0: बिल्कुल अनु बहुत बढ़िया क्वेश्चन को जाजू मैक्सिमम टाइम पे सुबह पेशेंट को यहाँ हम भी वहीं पाते हैं मैक्सिमम पेशेंट से बीपी क्योंकि बीपी थोड़े बका भेजू बीपी से असरा मतलब सिम्टम जगह बीपी मैक्सिमम टाइम 80% पेशेंट और बीपी हम बीपी से जगह थी निज मामूली सा जुर्मो कुर्मो की सड़क कभी आल कहेंगे 20% है उसको बाकी बीपी से अजीना सरे किडनी जा सर तू हार्ट जा सर तू दल बदल हुई उसे पता भी नहीं मनु रहे उन तो मैक्सिमम जब से जो था ना बीपी अगर कौन है से चकिल तो गया तो जाएंगे तो हफ्ते दो चार तो बंद ना क्योंकि जगह प्रॉब्लम भी नहीं अशनी दरीना सर जगह प्रॉब्लम भी नहीं जुर्मो कुर्मो की नहीं तो उससे की लाई नुकसान भी नहीं बीपी जब तक दवा टी ट्रके डॉक्टर से बंद थे ना तो कभी खुशू से 40 साल जो पता नहीं ब्लड प्रेशर ब्लू जो एसेंशियल हाइपरटेंशन था आश्रे तो मैक्सिमम टाइम ठीक भी नहीं दवाई लाइफ लॉन्ग हो साथ में डाइटरी मतलब अनिल कौन ही क्यों नहीं गए एहतियात में ना तो कम से कम 5 महीने 6 महीने से ठीक कुछ अचीर होगा 5 महीने 6 महीने एक एक चेकअप पे छोड़ो बीपी अभी लोकल चेक कर लूंगा जवा टी बिल्कुल बन जो निशान कभी डोज कम देनी डोज कम कभी कम हो खुदू से नुआ लोटे मुझे कम आई हूँ यौन हंसू नहीं ट्रेज बीपी खुश आई हूँ फिर तुम को डायट्री ये प्रॉब्लम नहीं अगर कभी लू नहीं खुशी चेंज तो बीपी बढ़ाई हूँ लू नहीं कम चेंज तो ठीक से उससे होने कम बढ़ाई जो नहीं मारे डोज बीपी कम जो नहीं मतलब जरूरत पे नहीं लेकिन बीपी और जवा टी बिल्कुल बन जो नहीं
1: तो डॉक्टर साहब शुक्रिया जो मट ले हनी की छो बिजी हाँ तो असुर आने खेन दे जो छो वक लाओगे निमनिश थे बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुसे असुर आने मौका दा
0: मेहरबानी जी शुक्रिया
1: या जी अस्सलाम वालेकुम सरजारू दख हनी की छो जा अनि टेलीफोनिक मुश्कलट कौन दे बेयत अनि बहुत सला कि हमेश तो महत पा आजी दोयों बेया मासक बनी बेया ताकि बेअकीगा अनु खचो करुणा नो मो रोग जो रठजी सचोन तो ने असे वजह की एक जकोरगा अवश्य नैन तो अनिबो दिसनला आजू को प्रोग्रामो खेन गा छुपा फेनो जील दो दबोन से अगर जी छोराउ तो इनशाला मुतिलाक बड़ा प्रोग्राम गिनी छोड़क मुठो हाजिर बोन सदड़क छनो बस्कोचो छनो रा राजा अमजेदार इजाजत दिया खुदा यार।

0: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान क़िलेदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तिजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम क़िलेदी साझेदारों में से एक करार दिया है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नजदीक धमाका होने से कम अज कम 24 अफराद हलाक हो गए और कई दीगर जख्मी हुए हैं। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसीतर मौजूदात पर तबादला ख्याल किया और भारत अमरीका क़िलेदी साझेदारी की अहमियत को दोहराया। साथ ही उन्होंने तिजारत, तवानाई, मोबिलिटी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत इश्तराक के अहम शोबों को उजागर किया। हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे का तस्करा करते हुए कहा कि अमरीकी इंतजामिया के पहले दिन से ही दोनों मुल्क बाकायदगी से राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने पर उनकी बातचीत में खलीज के खित्ते की मौजूदा सूरत हाल व वाकयात पर तवज्जो मरकूज की गई। साथ ही क्वाड मीटिंग से कबल भारत बहरुल काल खित्ता बदस्तूर एक अहम तरजीह है। वजीर खारजा ने भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने तवानाई की तिजारत में हालिया तौसी का खैर मकदम किया और कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकजी अहमियत हासिल है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अवाम से अवाम के राब्तों को खास मकाम हासिल है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कानूनी और दुरुस्त शक्ल में मोबिलिटी मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने तनाजात को हल करने के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करने के भारत के मौकफ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तिजारत और लेन देन की हिमायत करता है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम क़िलेदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमरीका के क़िलेदी एतबार से यकसा मौकफ हैं, जिससे आने वाली सदी की समत तय होगी। जनाब रूबियो ने यह भी कहा कि तवानाई के मामले पर भी भारत और अमरीका क़िलेदी एतबार से यकसा मौकफ रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड बुजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। ये मीटिंग इस माह की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने

मरकजी वजीर ज्योतिर आदित्य सिंधिया का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि किस तरह खांग चेन जोंगा के 5 खजाने सिक्किम के सफर को रोशन करते रहे हैं, जिससे विकसित सिक्किम 2047 की राह हमवार हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मजकूरा मजमून में खांग चेन जोंगा को सिक्किम की सरजमीन, उसकी यादों और जमीर के महाफिज के तौर पर पेश किया गया है। इस मजमून में सिक्किम के लोगों की जिंदगी में खांग चेन जोंगा की सकाफती, रूहानी और तारीखी अहमियत की अक्कासी की गई है। बीजेपी के सरकर्ता लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर मुल्क में निराज की कैफियत फैलाने के लिए एक संगीत साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। जनाब पीयूष गोयल ने इल्जाम लगाया कि मुल्क को बदनाम करना, आईनी इदारों की तौहीन करना और भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ताकतों से अपील करने के लिए बैरून मुल्क जाना कांग्रेस पार्टी की असल नीयत रही है। सारिफिन के उमूर के महकमे ने मुल्क में वजन और पैमाइश की जांच के निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए सरकार के मंजूर करदा जांच मराकज के रोल को वसत दी है। इसके लिए सरकार ने 2013 के कानूनी मेट्रोलॉजी जाब्तों में तरमीम की है। सार्फिन के उमूर की वजारत ने बताया कि नए जाब्तों की रूह से इन मराकज को वजन और पैमाइश के 23 जुमरों की तस्दीक करने और फिर से तस्दीक करने की इजाजत होगी। तरमीम शुदा जाब्तों के तहत पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर्स को उन आलात की फहरिस्त में शामिल किया गया है जिनकी जांच सरकार के तस्लीम शुदा जांच मराकज कर सकेंगे। उम्मीद है कि इस इकदाम से तस्दीक की खिदमात के अमल में बेहतरी आएगी, सलाहियत में इजाफा होगा और पूरे मुल्क में माहौलियात के लिए ज्यादा साजगार ईंधन के इस्तेमाल को तकवीत मिलेगी। सिक्किम बाजाब्ता तौर पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुकम्मल मेंबर बन गया है। गैंगटोक में सरकारी जराये ने बताया कि सिक्किम ने दरिया को महफूज रखने, आबपाशी और सैलाब से पैदा हालात से निपटने के प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत की तजवीजें पेश की हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की हालिया मीटिंग के दौरान इस फैसले को हतमी शक्ल दी गई। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो एबोला वायरस के फैलने के पेश नजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हुकूमत ने इन मुल्कों में रहने वाले या सफर कर रहे भारतीय शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो मकामी हुकाम की तरफ से जारी सेहत आम्मा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत में इबोला बीमारी के किसी भी केस की कोई इतला नहीं मिली है। 6 रोजा 79वीं आलमी सेहत असम्बली का इजलास जेनेवा में खत्म हो गया है, जिसमें मेंबर मुल्कों ने इंसानी सेहत के तहफ्फुज में कसी रुखी इश्तराक को आगे बढ़ाने की खातिर कई करारदादें मंजूर की हैं। आलमी सेहत असम्बली के इजलास में मुख्तलिफ मामलात पर 20 से ज्यादा फैसले और 13 करारदादें मंजूर की गयी, जिसमें तपेदिक, इमरजेंसी हिफाजत सेहत, एंटी माइक्रोबायल मुदाफियत, हेमोफीलिया और दीगर उमूर शामिल हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। ये धमाका राजधानी कोयटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस वाकये के बाद पूरे कोयटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को कोयटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शिमाली चीन में कोयला कान में हुए धमाके से कम अज कम 82 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद लापता बताए जाते हैं। शांजी सूबे में ल्यू शेनू कोयला कान में हुआ यह गैस धमाका चीन में साल 2009 के बाद से अब तक का बदतरीन हादसा है। जुम्मे के रोज जब यह धमाका हुआ तो कान में मुबैना तौर पर 247 कानकुन काम कर रहे थे। भारत में चीन के सफी यू फी होंग ने कान के हादसे के बाद ताजियती पैगाम भेजने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तशक्कुर का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में चीन

0: حمایت اور ہمدردی کے لیے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جائے حادثہ پر بچاؤ اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ 125वां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच अपना रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की मुहिम का आगाज करेंगे। भारत की तरफ से मर्दों के डबल जुमरे में यूकी भामरी और न्यूजीलैंड के उनके साथी खिलाड़ी माइकल वीनस जोड़ी बनाकर खेलेंगे, जबकि एन श्री राम बालाजी ब्राजील के अपने साथी खिलाड़ी के साथ जोड़ी बनाकर मुकाबला करेंगे। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और अमरीका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फरामी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमरीका के वजीर खाजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को ये सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नजदीक धमाका होने से कम 24 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के प्रोग्राम में हमने नगमे लिए हैं मजनू सुल्तानपुरी के लिखे हुए, चूंकि आज उनका यौम वफात है। मजनू सुल्तानपुरी 1 अक्टूबर 1919 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तालीम की मधवी रही, इब्तदा घर में ही हुई लेकिन फिर बाद में दर्स निजामी से फरागत के बाद उन्होंने हिकमत शुरू कर दी और लखनऊ में तकमीरुल तिब के कॉलेज में अपनी तालीम मुकम्मल की। इत्तेफाक से सुल्तानपुर में एक मुशायरा हुआ और वहां आपने एक गजल पढ़ी जिसकी बड़ी शोहरत हुई। लोगों ने कहा कि आप शायरी भी साथ साथ करें तो बेहतर है, एक मत भी चलती रहे और शायरी भी चलती रहे। उस दौर में जिगर मुरादाबादी साहब का सिक्का चलता था, लोग जिगर मुरादाबादी को पसंद करते थे और उसी के तर्ज पे मजरू ने अपनी शायरी का आगाज किया। मजरू सुल्तानपुरी के बारे में एक बात यह भी कही जाती कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के मेंबर थे और बहुत सरगर्मी के साथ उसकी कारकर्दगी में हिस्सा लेते थे। मजरू सुल्तानपुरी 1946 में मुंबई गए और वहां साबु सदीक में एक मुशायरे में जब वो गजल पढ़ रहे थे, मारूफ प्रोड्यूसर यार कारदार की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने उनसे कहा कि आप फिल्मों के लिए लिखिए। उस मुशायरे की सदारत जिगर मुरादाबादी साहब फरमा रहे थे। मजू साहब ने तो इनकार कर दिया लेकिन जब जिगर साहब ने समझाया कि नहीं, आपको लिखना चाहिए, इससे आपकी न सिर्फ शायरी मजबूत होगी बल्कि आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपके खानदान की किफालत का जरिया भी बनेगी, तो मजरू ने फिर इब्तदा की और सबसे पहले नौशाद के लिए एक उन्होंने नगमा लिखा। उस नगमे के बाद धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ और उसके बाद आखिरी वक्त तक तकरीबन सन 2000 तक उन्होंने नगमे लिखे और खूबसूरत नगमे जिनमें गजल भी है और गनायत भी है, शायरी भी है। आज के प्रोग्राम में हम आपको वैसे ही कुछ नगमे सुनवा रहे हैं।

आज भी मेरे अंदर वो शहर यहां से वहां तक दूर दूर फैला हुआ है। जब शाम के साए गहरे हो जाते हैं तो मेरे अंदर ये शहर जाग उठता है। इसकी रंगशाला में आर्यवीर का कोई नाटक खेला जाता है। अमरावती के गीत राजभवन की चार दीवारी से बाहर शहर की गलियों में गूंजने लगते हैं।

0: को रख दो और मेरे करीब आ बैठो। बजरे को इन लहरों पर आप ही आप बहने दो और मुझसे बातें करो, आर्यवीर की, उनके नाटकों की। राजकुमारी अगर आर्यवीर को ना देखें तो अच्छा है। क्यों, क्या वो देखने में ऐसे बुरे लगते हैं? वो इतनी खूबसूरत है राजकुमारी कि आप उन्हें देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे।
1: क्या सच कहती हो नीलिमा?
0: सच झूठ का फैसला तो आज हो ही जाएगा।
1: वो कैसे?
0: आज स्टेज पर उनका नया नाटक खेला जा रहा है।
1: मैं जरूर चलूंगी नीलिमा। क्या वहाँ हम उन्हें देख भी सकेंगे?
0: क्यों नहीं।
1: तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ख्याल रहे, मेरे कुछ चुने हुए गीत उन्हें लिखकर जरूर दे देना और उनकी राय भी मालूम करना।
0: आपके प्रेम गीत पढ़कर तो दीवाने हो जाएंगे आपके आर्यवीर।
1: हमारे आर्यवीर?
0: आपके नहीं तो और किसके? आज तो महाराज और महारानी भी जाएंगे वहाँ। आर्यवीर के नाटकों की शोहरत दूर दूर तक फैल रही है।
1: नीलिमा, सुना है लड़कियाँ उनकी दीवानी है, कहीं किसी को दिल तो नहीं दे बैठे?
0: किसी को दे भी दिया हो तो वापस मांग लेंगे राजकुमारी अमरावती के लिए। वो हसीन है तो हमारी राजकुमारी भी किसी से कम नहीं। देखिए बदलियों में छुपा छुपा चंद्रमा कैसी हसरत से देख रहा है आपके चेहरे को।
1: हटो, बनाओ नहीं।
0: गुलाबी पेश करूं?
1: संदल का अर्क मिला देना।
0: लीजिए,
1: तुम भी लो।
0: आज नहीं, वरना आर्यवीर के नाटक का लुत्फ नहीं आएगा।
1: तब तो मैं भी नहीं लूंगी। नीलिमा, बजरे को राजभवन वापस ले चलो।
0: जो होगी राजकुमारी। नाटक का समय भी हो गया है। देखिए ना, दूर रंगशाला चराखों से कैसी जगमगा रही है। सुना है आर्यवीर ने ये नाटक पूरे 2 बरस में लिखा है।
1: अच्छा,
0: और ये उनका बेहतरीन नाटक है। राजकुमारी, अब नाटक शुरू हुआ ही चाहता है। महाराज और महारानी तशरीफ ले आए। वो देखिए, सामने मंच के दाएं तरफ झरोके में देख लिया, उनके साथ प्रेमवर्धन भी है। कितने अच्छे लग रहे हैं प्रेमवर्धन। यहाँ भी फौजी लिबास में आए हैं।
1: मेरा ख्याल है ये सोता भी फौजी लिबास में ही होगा।
0: इनके दिल में आपके लिए बड़ी मोहब्बत है।
1: फिर ऐसी बात मुंह से ना निकालना नीलिमा, मुझे नफरत है इससे, इसके नाम से भी और इसके काम से भी। भगवान जाने महाराज इसके इशारों पर क्यों चलते हैं।
0: प्रेमवर्धन बहादुर है राजकुमारी। पिछली लड़ाई में दुश्मनों को जो शिकस्त मिली उसका सेहरा इन्हीं के सर है। सारा देश इन पर फख्र करता है। महाराज तुम्हें अपना बेटा कहते हैं।
1: बस बस नीलिमा, बहुत गुणगान हो चुका इस फौजी अफसर का। सोचता होगा महाराज के बाद राज सिंहासन का वारिस यही होगा, मगर ये भूल है इसकी। मैं ऐसा नहीं हुई दूंगी।
0: अरे लो, पर्दा उठने ही वाला है।
1: अरे स्टेज पर ये अंधेरा क्यों हो गया?
0: ये आर्यवीर का पुराना अंदाज है राजकुमारी। वो अब स्टेज पर दाएं तरफ से दाखिल होंगी। वो देखिए, वो आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे वो जरा सी रोशनी हुई। रोशनी के दायरे में ये चेहरा देखिए।
1: हाँ देखा, पहचान गई मैं। ये आर्यवीर के सिवा और कोई नहीं हो सकता। क्यों नीलिमा, मैंने पहचानने में गलती तो नहीं की?
0: नहीं राजकुमारी, आपने ठीक पहचाना। देखिए ना, कितने शांत लग रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं सबको। महाराज और महारानी के सामने किस अदा से झुक रहे हैं। अब उनकी नजर आपकी तरफ।

0: शुक्रिया। इजाजत हो तो इस निगोड़ी चिलमन को हटा दूं ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह देख लें।
1: नहीं नहीं पगली, ऐसा गजब ना करना। महाराज ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। और हाँ, तुमने उनसे मुलाकात के लिए कोई तरकीब निकाली?
0: तरकीब निकाल ली है। नाटक शुरू होते ही आर्य भी स्टेज के पीछे चले जाते हैं, हम भी चुपके से वहीं चलेंगे।
1: तुमने मेरे गीत लिख लिए ना?
0: हाँ, बहुत खुशखत लिखे हैं। गीतों का चुनाव ही मैंने किया है।

0: मेरे साथ ही रहना। हाँ लो आर्यवीर को देखो, हमें देख लिया उन्होंने, मुस्कुराई भी है। आ जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ, कोई काम हो तो दासी का आवाज दे दीजिएगा।
1: नहीं नहीं, अकेले में मैं घबरा जाऊंगी। नीलिमा
0: आप अकेली नहीं होंगी, आर्यवीर भी तो होंगे।
1: तभी तो आज दूसरी बार डर लग रहा है, आर्यवीर से नहीं खुद अपने से।
0: वो आपका सारा डर दूर कर देंगे।
2: आज मौसम कितना अच्छा है, आग बाकी हर चीज पर निखार है।
1: नीलिमा बहुत शैतान है, कह रही थी।
2: हाँ हाँ, आप रुक क्यों नहीं, कहिए ना।
1: मैंने उससे कहा तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मुझे डर लगता है। बोली आर्यवीर आपका डर दूर कर देंगे।
2: तो क्या मैं इतना डराना लगता हूँ आपको?
1: नहीं नहीं, डर आपसे नहीं, अमरावती को अपने आप से डर लग रहा है।
2: वो किस लिए?
1: न जाने क्यों बार बार यही लगता है, जैसे जैसे हमें कोई देख रहा है छुप छुप कर।
2: आपको नाटक कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा, लेकिन नाटक में कीर्ति को मारना मुझे अच्छा नहीं लगा।
2: मौत के अलावा उसका कोई और अंजाम हो ही नहीं सकता था।
1: इतना जुल्म बर्दाश्त करने वाली औरत का ऐसा अंजाम?
2: ये मौत नहीं है राजकुमारी, बल्कि उसका खामोश एहतजाज है, पूरे समाज के खिलाफ, पूरी तहजीब के खिलाफ, एक निकम्मे शासन के खिलाफ।
1: न जाने क्यों मुझे उसकी मौत नागवार लगी।
2: यही मेरा मकसद था, कीर्ति की मौत पर आदमी अंदर से टूटने लगे और देर तक अपनी रूह के अंदर एक जलन सी महसूस करता रहे। मैंने आपके गीत पढ़े,
1: कैसे लगे आपको?
2: अच्छे हैं, लेकिन जिंदगी से दूर।
1: वो कैसे?
2: आपके गीतों में सुंदरता तो है, लेकिन जिंदगी का रस नहीं।
1: सुंदरता में रस न हो तो उसे सुंदरता कैसे कहेंगे?
2: ख्वाब कितने सुंदर होते हैं, कितने हसीन, लेकिन हकीकत से कितने दूर होते हैं। राजभवन में रहकर आप ख्वाब देख सकती हैं, इस राजभवन से भी आलीशान और बुलंद राजभवन के, लेकिन हकीकत राजकुमारी जी राजभवन के अंदर नहीं, राजभवन के बाहर बिखरी हुई है।
1: क्या क्या ये जिंदगी मैं नहीं देख सकती?
2: क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपको राजभवन के कैद से बाहर निकलना होगा, वरना आपके अंदर की शायरा इन ख्वाब में दफन हो जाएगी। अगर आपको राजकुमारी अमरावती के बजाय सिर्फ अमरावती बनना है और युग युग तक अपने गीतों से सोई हुई आत्माओं को जगाना है, तो राजभवन के बाहर जो दुनिया बस रही है उसे जीना होगा।
1: हम ये दुनिया जरूर जिए।

0: सुन रहे हैं प्रेमवर्धन, क्या ये सच है कि वो भितमरा नाटककार राजकुमारी के महलों में आने जाने लगा है?
1: सिर्फ यही नहीं महाराज, बल्कि राजकुमारी मामूली औरतों के भेष में उसके साथ शहर के गंदे इलाकों में घूमने जाती।
2: मुझे यकीन नहीं आता प्रेमवर्धन, लगता है तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है।
0: नहीं महारानी, ये सच है।
1: और ये भी सच है कि अगर अभी से कोई तरकीब न सोची गई तो पूरे देश में राजकुमारी बदनाम हो जाएंगी।
0: कोई राजघराने पर उंगली उठाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: इस सांप को काटने

0: इससे पूरे देश में कोहराम मच सकता है। लोग आर्यवीर को बहुत चाहते हैं।
1: एक तरकीब है
2: और वो ये कि इस सांप को दूध पिलाना शुरू कर दो।
1: महारानी ने हमारे मुंह की बात छीन ली। ऐसा ही करो प्रेमवर्धन, आर्यवीर शायद राज सिंहासन के ख्वाब देखने लगा है। उसे दरबारी नाटककार बना दो और हमेशा हमेशा के लिए निकम्मा कर दो। आर्यवीर, हमें तुम जैसे कलाकार पर नाज है। तुम वाकई अपने जमाने के एक बड़े नाटककार हो। हमारी दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारा फन इससे ज्यादा तरक्की करे और तुम्हारी शोहरत दूसरे देशों में भी फैले।
3: मैं आपका शुक्रगुजार हूं महाराज। मेरे फन को आप कदर की निगाह से देखते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज है।
1: आज से तुम राज कलाकार हो। दरबार में तुम्हारे लिए एक मुनासिब जगह मुकर्रर कर दी गई है।
3: इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। लेकिन आर्यवीर एक आम आदमी है और एक आम आदमी की तरह जीना चाहता है। इसकी जगह राजदरबार में नहीं महाराज, बल्कि इसे आपके ही इस शहर में वो छोटा सा मकान ज्यादा अजीज है, जहां इसके नाटकों के किरदार जन्म लेते हैं, परवरिश पाते हैं और इसके साथ जीते हैं। आपके इस अजीमुल शान दरबार के आदाब से न वो वाकिफ हैं और न मैं।
1: तो हम समझ ले कि हमारे बख्शे हुए इस एजाज को ठुकरा रहे हो।
3: आपका ये एजाज मेरे लिए बहुत है कि आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई। और
1: हम चाहते हैं कि आर्यवीर जैसा कलाकार सुख और आराम से जिंदगी गुजारे, अपने फन को हमारी दौलत से और निखारे।
3: फन को दौलत से नहीं, खून से सींचा जाता है महाराज, और आर्यवीर के रगों में अभी बहुत सा खून बाकी है जिसे वो फन की देवी की नजर कर सकता है।
4: आर्यवीर ने महाराज की बात न मानकर अच्छा नहीं किया राजकुमारी। तो क्या तुम ये चाहते हो कि वो दरबार की रंगरलियों में अपने अंदर के कलाकार को खो दें?
5: महाराज बहुत नाराज है।
4: आर्यवीर अपनी तरह से जीना चाहते हैं और यह हक उनसे कोई नहीं छीन सकता।
5: क्या महाराज भी नहीं?
4: हाँ वो भी नहीं।
5: महाराज बहुत जिद्दी हैं।
4: और आर्यवीर उनसे भी बड़े जिद्दी हैं। न वो अपने फन को त्याग सकते हैं न गरीबी को।
5: और अमरावती को?
4: अमरावती क्या होती है नीलिमा, उनके फन पर कितनी ही राजकुमारियों को कुर्बान किया जा सकता है।
5: मैं महाराज के गुस्से से डरती हूँ और प्रेमवर्धन इस आग को जरूर हवा देगा।
4: नीलिमा कितनी गहरी है ये नदी। जी चाहता है आर्यवीर के साथ इस नदी की गहराइयों में उतर जाऊं और फिर कभी बाहर न निकलूं। हमेशा हमेशा के लिए नामालूम गहराइयों में डूबूं।

0: आओ सुभाषिनी, बैठो। सुभाषिनी के आते ही कमरे में रोशनी हो गई।
1: तुम भी बैठ जाओ कुमो, इधर मेरे करीब।
2: जी
1: सुभाषिनी, ये चिराग वहां रख दो ऊपर। बस बस वहीं ठीक है।
3: आज नीलिमा आई थी।
1: नीलिमा यहाँ आई थी?
2: हाँ।
1: कुछ कहा? अमरावती कैसी है?
3: आप ही की तरह दुखी है। उसके महल के चारों तरफ पहरा है, नीलिमा को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। प्रेमवर्धन ने अपनी खास दासी को अमरावती की निगहदाश्त के लिए मुकर्रर किया है। सुना है इस पूर्णिमा को दोनों की शादी है।
1: ये तो जुल्म होगा, मुझ पर नहीं राजकुमारी पर। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। महल की दीवारों से सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे देंगी। दरअसल वो राजभवन में रहने के लिए पैदा ही नहीं हुई।
2: अब क्या होगा आर्यवीर?
1: मालूम नहीं कुमुद, मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्द कोई अनर्थ होने वाला है, कोई बहुत बड़ा अनर्थ। मैं एक बड़ा नाटककार सही, लेकिन प्रेमवर्धन मुझसे भी बड़ा नाटककार है, जालिम और संगदिल।

0: शादी हो गई?
1: नहीं।
0: तो क्या हम नामत थी?
1: राजकुमारी राजभवन से गायब हो गए, सिपाही उसकी तलाश में इधर आ रही
0: है। अरे वीर, आप यहाँ से निकल जाए, वो जरूर आपको पकड़ लेंगे। आप फौरन यहाँ से निकल जाए। सुभाषी, तुम मीन के साथ जाओगी
2: और तुम, आप मेरी फिक्र न करें।
3: मुझे ना पाकर वो जरूर समझ लेंगे कि अमरावती

0: क्या कोठड़ी है। जा, तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहेंगे, वही बोलना होगा जो प्रेम वर्धन चाहेगा। अब भी मौका है, सच सच बता दो कि अमरावती को तुमने कहां छुपा रखा है, वरना तुम्हारी हड्डियों से लिपटी हुई इस खुशनुमा खाल को खींचकर शिकारी कुत्तों को खिला दिया जाएगा और तुम्हारी हड्डियों को इस जमीन के नीचे हमेशा हमेशा के लिए गाड़ दिया जाएगा।
1: अगर मुझे मालूम होता कि राजकुमारी कहां है तब भी मैं उसका पता हरगिज न बताता।
0: लगता है तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं।
1: राजकुमारी की जिंदगी मुझे उससे ज्यादा अजीज है।
0: अमरावती हमारे सिपाहियों की निगाह से कब तक छुपी रहेगी? आज नहीं तो कल उसे राजभवन में आना ही होगा। मगर तुम मारे वीर मौत के मुंह में जाने से नहीं बच सकते। हम तुमसे बड़े नाटककार हैं और ये वीर तुम्हें इतनी जल्दी मौत के घाट नहीं उतारेंगे। ये तमाशा अमरावती को भी देखना होगा। अपने अजीम नाटककार का अंजाम वो अपनी आंखों से देखेगी। सिपाहियों, इस कैदी के तलवे छील दिए जाए और फिर इसके नीचे जलती हुई रेत बिछा दी जाए। हम इस नाटककार के सब्र की दाद देना चाहते हैं।

0: मेरी माँ, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? बताओ मेरी माँ, आरी भी कितनी तकलीफ में होगी, कितने गहरे अजाब में।
1: राजकुमारी, सुना है आज उनकी आंख की रोशनी भी छीन ली गई। उनका दुख अब न देखा जाता है न सुना जाता है। आप महाराज और महारानी से क्यों नहीं कहती कि वो आर्यवीर को जल्द से जल्द मार डाले? राजकुमारी, ये पल पल का दुख मरने से बदतर है। एक एक पल जैसे हजारों मौतों के बराबर है, बल्कि हजारों मौतों से भी बढ़कर है। इतने दुख तो कीर्ति ने भी नहीं सहे थे, बस चुपचाप मर गई थी। अब तो भगवान से मेरी यही दुआ है, पिछली किरत समय फट जाए और मेरा आर्य भी जल्द से जल्द लंबी नींद

0: जुल्म तशद्दुद का पहाड़ रेत के घर की तरह पल भर में ढह सकता है।
1: ये पर्दे के पीछे कौन है?
2: मैं हूं नए महाराज, आपकी दासी।
1: ओ नीलमा, आओ आओ, नाच रोक दो और जाओ। क्या खबर लाई हो नीलमा?
2: बहुत अच्छी खबर लाई हूँ नए महाराज।
1: क्या अमरावती के बारे में?
2: जी महाराज, राजकुमारी शादी के लिए रजामंद हो गई, लेकिन
1: लेकिन क्या कोई शर्त रख दी है?
2: बस छोटी सी शर्त।
1: जरूर पूरी की जाएगी, कहो क्या शर्त?
2: महाराज और महारानी की रिहाई।
1: बस
2: और इसके साथ आर्यवीर की मौत, लेकिन अजियतनाक।
1: अजियतनाक?
2: हाँ, अमरावती के दिन में मैंने आर्यवीर के लिए ऐसी नफरत भर दी कि वो अब उनकी मौत अपने ही हाथों से चाहती है।
1: नीलमा, तुमने वाकई कमाल कर दिया। आर्यवीर के लिए अमरावती के दिल में नफरत पैदा करके तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमारी कितनी वफादार।
2: शादी के बाद आप और वो बजरे में सैर करने जाएंगे। आपका कैदी आर्यवीर जंजीरों में जकड़ा हुआ उसी बजरे में होगा।
1: फिर
2: उसकी पीठ में पत्थर बांध दिया जाएगा। राजकुमारी उस अंधे कैदी को अपने हाथों से नदी की गहराइयों में धकेल देंगी।
1: नीलमा, ये मैं क्या सुन रहा?
2: ये सच है नए महाराज, राजकुमारी अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, एक महारानी की जिंदगी।
1: तो ऐसा ही होगा नीलमा, अमरावती की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। आखिर वो इस देश की महारानी है।
2: है नहीं नए महाराज, बल्कि कल होंगी।
1: जिंदा रहो नीलमा। लो ये हीरो का हार, पहन लो इसे, हमारी तरफ से पहला तोहफा समझो।
2: शुक्रिया नए महाराज, आपकी इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। दासी ने हार पहन लिया और अब चहकती फिरेगी, इतलाती फिरेगी आपकी राजभवन।

0: सुना तुमने महारानी का गीत।
1: शुक्रिया महारानी अमरावती, आपको नया गीत और नई जिंदगी मुबारक हो। अंधे कैदी की यही दुआ है कि आप यूं ही गाती रहें। प्रेमवर्धन, अब मेरे मरने में कितनी देर है?
0: इसके लिए तुम महारानी से पूछ सकते हो। मैं खुद ये तमाशा देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।
2: आर्यवीर, तुम मरना चाहते हो ना? जल्द से जल्द, और हम भी तुम्हें मौत के सिवा कुछ नहीं दे सकते। देखो, मुख्तार होते हुए भी हम कितने लाचार हैं, कितने मजबूर। हमारी मजबूरियों को समझते हुए हमें माफ कर देना आर्यवीर, हमें माफ कर देना।
3: नीलमा, ये शोर कैसा है? ये राजभवन से आता हुआ शोर किस बला का शोर है?
2: हमारा लोगों का सैलाब राजभवन पर टूट पड़ा है और अब इधर ही बरता रहा है। महाराज,
3: क्या कह रही हो?
2: आर्यवीर, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि तुम्हारे साथ इस नदी की गहराइयों में उतर जाओ। आओ, अब चले यहां से, इन लहरों के नीचे।
4: वो चकमगाता हुआ शहर जहां जुल्म और सितम के भयानक हाथों ने दो मुकद्दस रूहों का गला घोंट डाला है, आज मेरे अंदर

समझते हैं मैं मर गया हूं, मेरा नाम निशान मिट गया है, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं। आज भी मेरे अंदर वो शहर यहां से वहां तक दूर दूर फैला हुआ है। जब शाम के साए गहरे हो जाते हैं तो मेरे अंदर ये शहर जाग उठता है। इसकी रंगशाला में आर्यावीर का कोई नाटक खेला जाता है। अमरावती के गीत राजभवन की चार दीवारी से बाहर शहर की गलियों में गूंजने लगते हैं।

और स्वामी ने सुनी अभिनेत्री फिल्म का नाम लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

खाक की, हर खुली तो प्यारे खाक की।

0: मजरू सुल्तानपुरी के लिए उर्दू सर्विस की जानिब से। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से शाम के 4:50 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की जरूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत के हामिल है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को यह सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नजदीक धमाका होने से कम 24 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी तर मौजूदात पर तबादला ख्याल किया और भारत अमरीका कलीदी साझेदारी की अहमियत को दोहराया। साथ ही उन्होंने तजारत, तवानाई, मोबिलिटी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत इश्तराक के अहम शोबों को उजागर किया। हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे का तस्करा करते हुए कहा कि अमरीकी इंतजामिया के पहले दिन से ही दोनों मुल्क बाकायदगी से राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने पर उनकी बातचीत में खलीज के खित्ते के मौजूदा हालात और वाकयात पर तवज्जो मरकूज की गई। साथ ही क्वाड मीटिंग से कबल भारत बहरी काहिल खित्ता बदस्तूर एक अहम तरजीह है। वजीर खारजा ने भारत और अमरीका के दरमियान तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने तवानाई की तजारत में हालिया तौसी का खैर मकदम किया और कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकजी हैसियत हासिल है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अवाम से अवाम के राबतों को खास मुकाम हासिल है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कानूनी और दुरुस्त शक्ल में मोबिलिटी मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने तनाजात को हल करने के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करने के भारत के मौकफ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तजारत और लेन देन की हिमायत करता है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमरीका के कलीदी एतबार से यकसा मौकफ हैं, जिससे आने वाली सदी की समत तय होगी। जनाब रूबियो ने यह भी कहा कि तवानाई के मामले पर भी भारत और अमरीका कलीदी एतबार से यकसा मौकफ रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजमून शेयर किया है, जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि किस तरह से खांगशेन जोंग के 5 खजाने सिक्किम के सफर को रोशन करते रहे हैं, जिससे विकसित सिक्किम 2047 की राह हमवार हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मजकूरा मजमून में खांगशेन जोंग को सिक्किम की सरजमीन, उसकी यादों और जमीर के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया है। इस मजमून में सिक्किम के लोगों की जिंदगी में खांगशेन जोंग की सकाफती, रूहानी और तारीखी अहमियत की अक्कासी की गई है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर मुल्क में निराज की कैफियत फैलाने के लिए एक संगीन साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। जनाब पीयूष गोयल ने इल्जाम लगाया कि मुल्क को बदनाम करना, आईनी अदारों की तौहीन करना और भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ताकतों से

बच्चे आपस में बराबर हमरंग और एक ही किरदार के मालिक नहीं होते हैं। कोई काला तो दूसरा गोरे, एक सुर्ख तो दूसरा सफेद, और कोई दुबला पतला तो दूसरा मोटा ताजा, एक हर काम में ऑल राउंडर तो दूसरा बेकार अनजान, एक आलिम माहिर तो दूसरा जाहिल महज। तो उनकी ये तमाम इख्तलाफात उनके बरादराना मोहब्बत पर असर अंदाज नहीं हो सकते। मौला अमीर अल-मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अय्युहल फाखिरु जहलन बिन नसबी इन्नम अन्नासु लिउम्मिन वलि अबी هل تراهم خلقوا من فزة أم حديد أم نحاس أم ذهب هل تراهم خلقوا من فضلهم هل سوى لحم وشحم وعسب إنما الفخر لأقل ثابت وحياء وعفاف وأدب إن أداني سے حسب نسب پر فخر کرنے والا شخص معلوم ہے कि तमाम लोग एक ही माँ और बाप के नस्ल हैं। क्या तुम ख्याल करते हो कि ये लोग सोना चांदी लोहा और तांबे से पैदा किया है? क्या तुम गुमान करते हो कि लोग शराफत ही के साथ पैदा किए गए हैं? क्या इंसान पैदाइशी तौर पर गोश्त चर्बी और आसाब के सिवा कुछ और अनासिर से बने हैं? फखर तो सिर्फ ना सिर्फ अक्ल सलीम, हया, इफ्फत, परहेजगारी और अदब का नाम है। अगर आप एक दूसरे पर सिपकत लेना, एक दूसरे पर फोकियत तराशी करना, एक दूसरे पर रिश्क लेना चाहते हैं, तो रिश्क और मैदान की मुसाबिकत की मैदान सही और जायज मुसाबिकती मैदान तो नेक आमाल अखलाक हसना और खुलूसियत की रूप में आपके सामने मौजूद है। और इरशाद बारी तआला है, फस्तबिकुल खैरात, नेक आमाल के मैदान में मुसाबिकत ले लो। तो हम एक ही मुल्क के शहरी हैं और किसी कौम को दूसरे कौम पर कोई फोकियत गर्दाने की जरूरत नहीं है और न किसी को एहसास कमतरी की एहसास की जरूरत है, बल्कि सब भाई भाई हैं। हम सब इसी महबूब मुल्क के शहरी हैं, सपने इसी मुल्क की दाना पानी पर जिंदगी गुजारे हैं। एक ही जिस्म के आजा व जवार हैं, कोई सर है तो कोई पैर, कोई बाजू तो कोई दिल, कोई आंख तो दूसरा दिमाग का काम अंजाम देता है। और इस जिस्म को कमजोर और खोखला बनाने के लिए जहरीली जरासीम का काम तअस्सुब, मुनाफिरत, फिरका परस्ती और मुनाफिकत जरासीम में मोहलिक का काम अंजाम देता है और इस जिस्म को रोज बरोज कमजोर और लागर बना देता है। इन्हीं से इत्तेहाद का इजाला हो सकता है और तासुब ही मुनाजियात, इख्तिलाफात और तफर्रुका का सरचश्मा है। लिहाजा मुल्क की सलामती और बका को अपना नस्बुल ऐन बनाकर हम मुत्तहिद रहें।

0: छान अंगतेस तिका कुराने तिलावाची खेपची बेट नमाई दिन तक से बो नफीसा अख्तर नमाई साम क्लास से बा फिफ्थ क्लास हाँ कस बने नमाई दिस नफीरिंग एंड कल सफ़े या कुराने तिलावाची खेपची नमाई गला क्या बिस्मिल्लाह
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम

0: 만나던 것도 어떻게 한 번에 더 준대요. 저는 눈 좀 빼야 너무 이거 또 보는 거예요. 따서 씻고
1: 비나 앞에
0: 비나 앞에 몇 점 클래스인가?
1: 10점
0: 10 클래스 쓰겠다. 슬립 쥐도 뭐 살펴놓은 탐사께?
1: 토픽
0: 토픽 쥐가 뭔데?
1: 파니 무둥가 파니 세문나 볼라 나니 세 कैसे पानी पीते हैं पानी से हम जीते हैं जाने कब से पानी ये कितनी बड़ी कहानी है कहीं और से बर्फ कहीं पानी ही के बर्फ नहीं सब रूपों में पानी है कहती ऐसा नानी है नदियां बहती कर कर कर जल में गाते छल छल छल तालों में लहराता जल खूब

0: Dette er så pænt, at du er min jødbind, fru Nipia, fru Tjukken bind min kanis, Fatima. Vi er med, at vi er med, at vi er med, at vi er med, at vi er med, at vi er med, at vi er med, at vi er med, at
1: vi er med, at vi er med. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के

0: पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमरीका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमरीका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 109,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jayashankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. We devoted some time to nuclear energy

0: कैसे? अपने बैंक की तफसीलात दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना आसान?
1: अरे काहे का आसान, ये मनी म्यूल है, दूसरे के अकाउंट से गैर कानूनी पैसा मुंतकिल करते हैं, जुर्म है, जेल हो सकती है।
0: ना यार ना, मुझे जेल नहीं जाना है।
1: अपने बैंक अकाउंट को महफूज रखें, किसी को इस्तेमाल ना करने दें। आरबीआई कहता है
2: जानकार बने चौकन्ने रहे।

0: rangi business un lasket tang mifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun local in ya fayuli thokain akashwani stanchain customer un sapille pis cups mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: ایلومس بنی نوح انسانی رخص بچائیں حضرت علی مرتضی علیہ السلام۔

0: nga ti swerong sang ja chas tap chas is kor langa tes kere ju chana ji chas tap chas pe anu yani nga ti zamindaran kunis ga tsuk ga tsuk sperari khayal jak par gochas in or di anu ka tes dakhsa khususan ja tem pe anu ju nga ti spo pat pat pi tempo song sa ju du gar zar bana nga ti phulung da laka kun anu ju chana di pochas pu ya nga tes ga tsuk zosta chi ka dun la baramat ba gochas in or ju ga tem pe nga tes spor gochas in disko le le mufasal basem ul nari aluk pagash
1: mas pochas zar bana malla po nga tanga phul gobi yo टमाटर यो दिया बंद गोभी यो दिया दिया फसबीन ने तबर गोस अदून स्पेमिंग ना खा तो ना ना तब से ना खोना लाइन स्वाइंग बारुशी लाइन ने तब अस्पा को सावं बराबर शी जिन का सोन जी तब ना को कुरी फार्मूले यो दे कोई का खोरांग साम से सोन पे साम से ना दे का चार गुन्ना सा चार रुशी दे का ना ज्यादा का तो छाना खोर दान लसों से कोई अंस के जमीन चार गुन्ने हो स्टोर भी जिन छाना दे का दरे ना स्पोथ सोंग आता वो ना मिसाल स्नान आता टमाटर जरे तबेत या ना फूल गोभी तबेत या बंद गोभी तबेत या चों तबेत चों पो खसूस नाता चों पो मेगाट जरबी दस्टिन जो मात की पेंजिक चौशिक दी याब ना आदे पटक पहना चों पो ना दिन दी बार पहना स्टिन पुताब से दूस खत्म बसना ची दी मिंगना नाता सबसे चों पो जरूरी छात पिसना ना केमिकल पेस्टिसाइड देता से कोलोरो पेरिफास्ट या रोगर या फलान चित दो लता से दिन बाद पिन दरे नाता ऑर्गेनिक लो पेरेस लिहाजा दून यंचमिन माइन मना नीम नीम ऑयल जंचियो यहाँ हार्टिकल्चर इन क्यों सोचिए एग्रीकल्चर इन क्यों सोचिए दो कम से कम 3% शुयंस रचे एक लीटर ना तीन तीन चार ग्राम चिदंग नाली चीन चार एमएल ची तांसना दे आं तांसे शुयं तांसना स्पोर बस दोनों के पटाक पे फुट क्यों सना आधे आंस बांस जाता है कम से कम आधा घंटे की आधे निक देखे ना स्पोर कुशीन की स्पोर्ट है ना सबसे सोंगा जरूरी की सोंगे पटाक पो काफी लंबा उम्र लंबा तो फिर सोंगे पटाक पो चासन चाचु परुशीन खातो ती दे रिल्बू छगन पो साना बाहर लुजना सोंग पो आधे मेगा जर्विस्टिन बंग कब दबी अमूमन इस दा दुख ना था थों माओ की सोंग स्पोर्ट है ना माना पेट पो अमर कब से था दुख दुख का वाना एकदम डेस्टिन पो खोज अट्रैक बाद है लोमा में लोमा ना दिन जी सांस पुस्त अब चीन यार सिर दान लोलुस वाना खोज एकदम अट्रैक बाद चीन दोस गाता एकदम रूल छा चीन दो फ्रेस यन में सापो सिर पटक पचा चार गुशीन जब ना दिन ना छोरी छाना सा का तो गप सों से ना यहाँ दे पटक पो फिंग से दिन ना बना दे फिंग से का तो जाग ना दो मेगार दर बिस्टिन पो शितां बुद ना को मान चों बुदिन छाना आधे जल्ला स्पारुशिन ज्यादा फूल गोभी या बंद गोभी दोन लास बंद गोभी या टमाटर या मुंडी जरना दोन तपना दोन ला देन बारुशिन की मल्चिंग बनास फायदा मनिन मल्चिंग जरमा नापो प्लास्टिक बदले ना एग्रीकल्चर सुकास सुकास जोमास क्यों स्तामत लिहाजा मल्चिंग पो बसपा कोई बराबर दिस्ट्रा नहीं जा सकता मिसाल दया ना खुसूसन जों ना फूल गोभी ना टमाटर स्ट्रेस तपना मिक्सड क्रॉप तपना फायदा मन छात चेयर जरमा दया दाम मुंडी मुंडी चिक सिर चिक चिक मिसाल 20 या 24 इंच का टमाटर पतांचा देश किलो ने ये ब्लूस पाना इस किल पे हम फूल गोभी चीज तांचा देश आवा ये भी हिसाब ताना साइड टुल्ला मुंडी रे ताचा पहला खोना स्नाव मां मुंडी लन मत दे मुंडी लने मुंडी बाजार लसों या खामा यूज बस देखे ना फूल गोभी लन मत दे सप्पा टमाटर पो जगह लुसपा दे फूल गोभी खत्म छाना आखिरी टमाटर कुरान चाल लुसपा खो फूल जगह थोबा फिर खो मन ग्रोथ हो या टमाटर खुर्चा इन्ना क्यांचा इन्ना सक लुसपाना टमाटर पो जबरदस्त छात दोनों मल्चिंग फायदा दो छात कि एक तो आता छू कम रोशिन दूसरा खो छू कम लुसपेवाजी का छू कम रोशिन दूसरा न खो नापो प्लास्टिक युद्धपा फिर सावं छात के लुशिन छात लुसपा फिर खो ग्रोथ पंग मिसाल रुगो यों चांग एकदम रुगो मत टमाटर इन्ना बाकी से कतंग घन पोवा से एवा 15 से 20 दिन स्नास मिन मत स्नास मिंचास गतांगा फायदा छात
0: बख्शी साजी साहब छाना दक्षा गती यराजर मल्चिंग बना लेकिन फंकियो तें चुजु छाना गती दक्षा यराजर ना गती युर्मा बाजर जु छाना गती स्वंगन बहुत सारे गती फसकुने अनु युंग मत छाना जी स्वंगन कुन याने म्यूं चुक पत्ते फरेज मतस दू लगा चुक मिथार चिक बार बचा
1: स्वंगन पे मीना जा मल्चिंग पुन जुया एक तो दे नाकपो दें दी रदान पे उत्खन पुन मस के खत्म छचिन को स्केचामिन दूसरा ना को आता अरे मिसाल दे टमाटर या फूल गोभी या बंद गोभी चीप या जैक्सन रोम पे सख्ती बिंग ना या चौक पर थूस पर खत्म सों वहाँ साइट उन ला चीज के चीन दो खत्म साइट उन ला न्यान ना साइट ही दे शोल निका गाजर था मरुशीन गाजर ला दो इंदे की गाची शी गाजर इस साइट ला थुनमोरी का छाना कोई छूचा लेरदान ला सों से गाजर पर लंबा छचीन देखना दे मल्चिंग फायदा दो छचीन की एक तो

0: third trimester pyanuk third trimester zebana 7, 8, 9 langate zebaju last day delivery chache mahina sakpa ngates third trimester zebaju ode anuk chi bachin zebana ngates saiti ka duk ser demo base yoga bachin ju chetta nadi shuddana zebana ngates shuchikpu pehla his len shuchik bu ban bachin ju shuchik bu his len chin de mo base te kana relax baser de mo bas phut tan chin te kana a shuchik bu ban base na udung yam bur de mo base his len chin sa thua ngates bara mari zin chi bachin ju hamin bi breathe sir chin english ka khultu chakhan sak mata kam chachin ju de anu ga cho ga yoga bachin jan na ka to jese ki ngates brown broom yo mata udi sound ping chin ju zbur zere udu cho ga mata sound ping chin tu cho ga ngates di yoga bachin urti yogan sak bache wajah se ngata chi fayda hachin ju ni jer bana ngata nga pre weight ku normal lushin ju ngata ar dimu base ngata normal delivery cha chachin ju de time pikar dimu base ngata nga ngati pre weight normal lushin aur ngata diyan chi chachin je bana ngata yoga bana ka to ngata nga delivery time ka chang complications chachamin yes you want this precautions chilen margoshin jerna ka to hamesha ngates doctor ikana thuk se consultation bar goshin jungas ga tsoga yoga wa juni filadi yoga thik thik chachin amin zere ngates hamesha doctor ikana consultation bacha mana chemo doctor ikana machana first trimester yan chik second trimester yan chik third trimester yan chik mana pakka char goshin jo और दिया नो कंट्रा इंडिकेशन चियो चूज़ जरना का तो योगा बे टाइमी का अंगाता ब्लीडिंग छना या डिजीनेस छना डिजीनेस जरना जिंजिंग अछना या चक्कर यूं ना का तो योगा अंगातेस बंद बारगोशिन जो और अंगाता इमीडिएटली अंगाता डॉक्टर ला कंसल्टेशन बारगोशिन जो डॉक्टर ला सों से बारगोशिन जुंगा योगा बस बिन योगा बनंगा ब्लीडिंग सों अंगा चक्कर नोस ना रिलिया सों ड्यू छना का तो ची छाचिन या ची बारगोशिन ठीक इनामे नजरे ड्यू डॉक्टर इकना कंप्लीट टी से नतांगा डॉक्टर इकस्तन में चार गोशिन जो योगा नता इंटीनेटल केयरंग मतेज योगा चा बार गोशिन जो जन्ना और मतेज योगे फिला सुअ ट्रेन बस यो जन्ना का तो ड्यू ने फिला नाचेस नाची मेडिकली आशा ना इनम सक फुली ट्रेन जक्सो जो फुली कंप्लीटली ट्रेन बस यो जो ट्रेन जक्से यो जो कुआं दुनी का अवेयरनेस तंचा कुआं दुनी का हेल्थ एजुकेशन तंचा कुआं दुनी का नची फायदा यो ची नुकसान यो जरे नाचेस नाची इनामुन आशान कंप्लीटली ट्रेन जक्सो जो दोना कम्युनिटी लेवल का सोंसे गत सोगा ते से सेफ प्रैक्टिसेस योगे का हगो तंगमत तंगमत यु उदुन गामा नाचेस नाची इनम आशा सब पजु और नची इनम आशा सोंसे दुनी का हगो तंगमत खुआ और योगा मना सेफ इन सिंपल इन जो फन मी अमना प्रूनिस का फन मी कोई संभव और गला लुशुक भी कौन डिलीवरी टाइमी का बर्दाश्त भी कोंगा कोई सेहत लुस्पा कोई टेंशन कम भी तरीका इंजू योगा योगा बनाकर तो अमां सेव लुशिन प्रूं सेव लुशिन जो योगा बच्चा स्पूस बसे अमान आप प्रूनिस को स्ट्रॉंग लुशिन जो अमान आप प्रूनिस को कनेक्ट लुशिन जो थूते लुशिन जो प्रेगनेंसी दौरान लोग आखिर पिकांगस देना जरूरत योगा देमो बसे बचा योगा टाइम तंग से बचा और योगा मना अर्ली इन द मॉर्निंग बार गुशिन जो सुबह सवेरे मना चुक लांग से ना देमो बसे योगा बार गुशिन मोटु पिका योगा बचा स्पी ज्यादा फायदा यो चो वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु
1: दर सुपा यंतिस डिस्विंग यानि न्यूपिन सीएचओ मेम हकीमा बानुकना dana tisonambo diding si achinomoni khortang spo thama thon nanme dugna nga yantanambo thuk thuk deman ponga ajaza chase bo zeju khodan harzamani fagriam

0: Terentes Burgen Haber Lagan Jutpin, Medium Waves Knife and General Nika, Dew Akashwani Kerkelin.
1: Jami Business and Lasket Tangmifia, Lenchik Akashwani Rocks, Yanti Tsonglenun Localin Yafayuli Torikain, Akashwani Stanchain, Customer Unsapilepis Cups Mamu. Darinayantes Nang Yadaftar Yahati Kajuksenang Bangyan Chain Akashwani Ga Kender Chikika Advertisement Booking Akashwani Lokso Channelunika Advertisement Tangchao Samu Donarin Seyot Booking Befia Call Bazat 8700 01 4242
2: Apne Business Ko Badhane Ke Liye Lijiye Akashwani Ka Sahyog Aur Dijiye Use Bulandiyo Ke Pankh
3: Aapka Business Local Hai Ya Rashtriya आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता

0: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700014242 पर
1: 8700014242।
2: सुनो ना।
0: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाइन हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहा है मिठाई?
1: आरबीआई कहता है
2: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं नूर सबा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर मरकूज हुक्मरानी पर जोर देते हुए सरकारी मुलाजिमत इख्तियार करने वाले नौजवानों पर जोर दिया है कि मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ करे। मरकजी सरकार की वजारतों और दफातर में बढ़ती अमल में सरअत पैदा करने के लिए शुरू की गई पहल के तहत 19वीं रोजगार मेले से खिताब करते हुए वजीर अजम ने ये बात कही। कल मुनाकिद हुए इस रोजगार मेले में वजीर अजम ने 51,000 नौजवानों को मरकजी सरकार के मुख्तलिफ महकमों में तैनात की तकरारनामे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकसीम किए और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद इन नौजवानों से खिताब भी किया। जिना मोदी की तरफ से शुरू की गई इस पहल के तहत अब तक 12 लाख से ज्यादा नौजवानों की मरकजी सरकार की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बढ़ती अमल में लाई गई है। ये पहल नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने को सरकार की तरफ से दी जा रही तरजीह का मजहर भी है। वजीर अजम ने नए बढ़ती हुए इन नौजवानों को मुबारकबाद दी और कहा कि इनकी और इनके कुंभों की जिंदगी का ये एक अहम संग मेल है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों के दौरान अवाम पर मरकूज हुक्मरानी इनकी खास तरजीह रही है और बढ़ती हुए नौजवानों को इस मौके को सिर्फ जाती तरक्की का मौका समझने के बजाय कौमी खिदमत और कौमी तरक्की में नुमाया किरदार अदा करने का मौका समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में मुल्क के आलमी विकार और मुख्तलिफ ममालिक के साथ बढ़ती शराकत दारी से भी नौजवानों के रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। इस ताल्लुक से उन्होंने अपने हालिया 5 मुल्की दौरे का और इस दौरान हुए मुख्तलिफ समझौतों का हवाला भी दिया। वजीर अजम ने नौजवानों में कारखानादारी और सरमायाकारी के रुझान को फरोग देने के सिलसिले में सरकार की तरफ से की गई कामयाब कोशिशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त 22,30,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं और ये बड़ी तादाद में नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। कल की इस तकरीब के दौरान मुल्क के जिन मकामात पर नौजवानों को तकरारनामे दिए गए उनमें जम्मू भी शामिल है। जम्मू रेलवे डिवीजन में 200 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी के ऑर्डर मिले। तवक्को की जा सकती है कि नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से इख्तियार की गई हम पहलू पॉलिसी मुल्क में नौजवानों के लिए रोजगार के हसबी जरूरत मौके पैदा करने में कामयाब होगी और हमारे नौजवान मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। तबसरा खत्म हुआ। शब खैर।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, श्रीनगर। आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: वादी की आवाज।

फौजी भाइयों के लिए अपना मनपसंद प्रोग्राम यानी फौजी भाइयों के लिए लेकर हम फिर हाजिर खिदमत हैं। प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामेईन को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब।

दिल अपना और प्रीत पराया फिल्म से बोल शैलेंद्र की और तरस बनाई थी शंकर जयकिशन ने। लीजिए सुनते हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है अगर तुम न होते। बोल गुलशन बावरा के और तरस बनाइए आरती बर्मन।

में ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत बोल हसरत जयपुरी के और तरस बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है अभिमान। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत सजाया है एस डी बर्मन ने।

0: जाएंगे।
1: अरे यार ये माई किराया दवाई कैसे इंतजाम करूं? एक तरीका है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपने बैंक की तफसीलात दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना आसान?
0: अरे काहे का आसान, ये मनी म्यूल है, दूसरे के अकाउंट से गैर कानूनी पैसा मुंतकिल करते हैं, जुर्म है, जेल हो सकती है।
1: ना यार ना, मुझे जेल नहीं जाना है।
0: अपने बैंक अकाउंट को महफूज रखें, किसी को इस्तेमाल ना करने दें। RBI कहता है
2: जानकार बने चौकन्ने रहे।
1: हर बैंक के अलग अलग KYC कागजात, काश एक चाबी होती।
2: है ना अब्बा, CKYC ID।
1: CKYC मतलब?
2: बैंक आपकी KYC तफसीलात CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है और आपको मिलता है एक मुनफरिद 14 हिंसों का CKYC ID जो तमाम माली लेन देन में दुरुस्त है। एक जगह KYC अपडेट होने से बाकी बैंक इदारों में भी अपडेट हो जाता है।
1: वाह, RBI कहता है
2: KYC महफूज बैंकिंग की तरफ पहला कदम।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को जीने की राह फिल्म से एक गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं आशा भोसले को फिर वही दिल लाया फिल्म से बोल मजरूर के और तरस बनाई है ओपी नैयर ने।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेज 84 किलो हर्ट्ज, मीडियम वेव 1584 किलो हर्ट्ज के अलावा एफएम चैनल 100.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी करके लाया है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इस

0: बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 149,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के
1: श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 149,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार

पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत का पूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय त्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शेराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और

0: आंदोलन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy, trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy as well as safe and unimpeded maritime commerce was also reiterated. He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with the US, Israel, Iran, as well as other Gulf nations. Dr. Jaishankar also highlighted the importance of people-to-people ties and said legal mobility should not be adversely affected.
2: People-to-people ties are at the heart of our relationship.

ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती माहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को ताउन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने सीबीएसई के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूदात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकत दारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नखलो हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत ताउन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील की जरूरत को उजागर किया। तवानाई

इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नजदीक गोलियां चलने के वाकये के बाद तेजी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और ये वाकया वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाकये के चंद रोज बाद पेश आया है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमदोरफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत की है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने सीबीएसई के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के माहिरीन की खिदमत